हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रख दूं।

0: अहल बिना कौन ये जिसको रतन एक दिन है।
1: मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान, मैं तीनों लोगों के स्वामी अमित तेजस्वी रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत, जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो।
2: बस बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें, इसकी पूछ चला दी जाए।
1: महाराज रावण, यम दिन चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं।

महाराज रावण श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, यही एक पाप आपकी समस्त शक्तियों और सोने के महलों समेत इस लंका का नाश कर देगा। इस हंसते गाते देश में एक चित्कार के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मृत आत्माओं को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जय श्री राम।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

Let's

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरी रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: अरे मैं क्या एक भूचाल हूँ?
1: भूचाल भी और एक नाजुक ख्याल भी, ले लीजिए।
0: मेरे लिए?
1: जी, आपकी नजर।

0: जानी।
1: ये बात है, कहीं नजर न लगा दीजिए।
0: अजी हम तो आपकी नजर के मारे हुए हैं।
1: तो फिर हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं?

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं भोजपुरिया धमाल आरजी सोनी के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। भोजपुरी गानों की मस्ती और देसी अंदाज के साथ धमाकेदार मनोरंजन का रंग जमाइए और खूब एंजॉय कीजिए। अपनी पसंद के गानों को सुनने के लिए इस्तेमाल कीजिए रेडियो हॉटस्टार के सॉन्ग रिक्वेस्ट ऑप्शन का। अपनी फरमाइश भेजिए और अपने पसंदीदा गानों को बजवाइए। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना। जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

नमस्कार प्रणाम राम राम का हाल बार सभी के उम्मीद बाकी रुवा सभी बढ़िया होखम। आज फिर से हम हाजिर बानी रुवा सभी के बीच मुझपुरिया धमाल के सके और हमरा के तर रुवा सभी जानते बानी फिर भी हम बता दी कि हम बानी रुवा सभी के रेडियो दोस्त आरजे सोनी और रुवा सभी के बीच हाजिर बानी रुवा सभी की दोपहरिया के बढ़िया बनावे खातिर भोजपुरिया धमाल के साथ है, जो उनकी हर शनिवार के दोपहरिया के 1:30 बजे से शुरू होखेला। और इस कार्यक्रम में हमने के बत कही करे निशा भोजपुरी में और गाना के फरमाइश भी भोजपुरी में ही सुने निशा। तो चलिए बिना देरी का आज के कार्यक्रम के शुरुआत करता नहीं और वह सभी भी कार्यक्रम से जुड़ी और कार्यक्रम के और भी खास बनाई। फिलहाल एंजॉय करी एगो बढ़िया सा गाना के और एक बाद हम शामिल करें रुवा सभी के मैसेज और फरमाइश के।

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रहुआ सभी के। और यहाँ मैसेज पहुँच चुका बा हमारा पास, और मैसेज में बहुत सारा गाने के फरमाइश जोन बा। वो हिंदी में बात कर रहुआ सभी से निवेदन बाटे कि अपन गाने के फरमाइश चेंज कर दीजिए भी हिंदी गाने के फरमाइश के लिए बा। कहे कि कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ जितना बतकई हुई वो भोजपुरी में, और बतकई के साथ साथ गाना भी रही जौन की भोजपुरी में ही। और यह मैसेज की तरफ रुख करे मापन तब मैसेज बांटे राहुल पासी जी वानी लिखा तनी नमस्कार आरजे सोनी जी, आपके प्रोग्राम में आज पहली बार सुना तनी और रिक्वेस्ट में गाना के फरमाइश बा नील कमल के आवाज में। तो बिल्कुल फरमाइश बा, तो प्ले करे के पूरा कोशिश बांटे, बहुत बहुत स्वागत बांटे। यहाँ काजल झा जी जुड़ल बानी, रुआ के भी स्वागत कर तनी शो में। और यहाँ राजेश कुमार जी बानी, बहुत बहुत स्वागत बांटे लिखा तनी। और ठीक कई सारा अनिल कश्यप जी जुड़ चुकल बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे लिखा तनी। गुड आफ्टरनून सोनी जी, कैसन बानी? और हम ठीक बानी, रुआ प्रोग्राम में जुड़ गल बानी तो हम भी बिल्कुल बढ़िया बानी, बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी शो में। और यहाँ सुनील कुमार जी बानी, संदीप सुतार जी बानी, राकेश शर्मा जी बानी, मुबारक हुसैन जी, रुआ सभी के बहुत बहुत स्वागत बटे। और भी कई सारा मैसेज बा शामिल कर लिए, उससे पहले यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करें। राजेश कुमार जी बानी हबीबपुर से, और यहाँ की तरफ से गाना बाटे पवन सिंह के आवाज में। तब चली राउर गाने के फरमाइश जोन बा, प्ले करते नहीं, इंजॉय करी अपन गाना के।

0: तभी हमने के गाना सुनी सर राजेश कुमार जी के फरमाइश रहे और काफी निमन गाना के फरमाइश रहे यहाँ के तरफ से और यहाँ आगे काफी सारा मैसेज बढ़े राजेश कुमार जी के तरफ से मैसेज पहुँच गए तनी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सुनी जी और यहाँ और भी कई सारा मैसेज बाटे बागेश्वर निषाद जी जुड़ल बनी लिखा तनी का हाल चाल बा राजेश सुनी जी नमस्ते नमस्ते जी बिल्कुल बढ़िया बा रहुआ बताई कैसन बानी और आगे यहाँ एक और मैसेज बा अशोक देशमुख जी जुड़ल बनी लिखा तनी नमस्कार सुनी जी कार्यक्रम बहुत प्रिय धमाल बहुत ही शानदार हो रहा बा बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के और बहुत बहुत धन्यवाद सुनो जुड़े खातिर और आगे यहाँ अभिषेक तिवारी जी बानी लिखा तनी कि हम जुड़ गए बानी हम आगे निजी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी और आगे यहाँ राकेश शर्मा जी बानी लिखा तनी कि आज वो सुनी जी वेलकम बटे राम राम और रेडियो हॉट है दोस्त के जय श्री राम बिल्कुल बोल दिले बानी और यहाँ राजेश भाई के पसंद सुपर से ऊपर है और हमरा के रह दतु अपना नैनवा में बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के भी और आगे यहाँ विष्णु चंद्र जी जुड़ल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे लिखा तनी कि भोजपुरी गाना थोड़ा कम पसंद आवेला लेकिन हिंदी गाना भूजे और आप चलाएं तो ठीक बाटे हिंदी गाना और पसंद तो पक्का आई रुआ के और सभी दोस्त के सभी के पसंद आई अगर चलाएं तो अच्छा रहे तो बिल्कुल हिंदी सो तो रुआ सभी के पूरा सप्ताह के आठों दिन सुना तनी लो लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल में भोजपुरी कार्यक्रम बाटे और ये में सिर्फ हम भोजपुरी गाना ही चला सकते हैं वैसे हिंदी गाना के हम खराब नहीं कि बोलत हिंदी गाना तो कोनो भी होकर पसंद तो जरूर आई लेकिन अगर भोजपुरी गाना के फरमाइश कर दी तो हम जरूर प्ले करें बाकी हिंदी गाना हम नहीं कर सकत और यहाँ बबीता देवी जी जुड़ल बनी लिखते हैं कि भोजपुरी में नमस्ते और रिक्वेस्ट में गाना बाटे बजा दें बिल्कुल गाने के फरमाइश और प्ले करें बहुत बहुत स्वागत बाटे फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करें जो कि हमारे पास पहुँचल बाटे सुनील कुमार जी बानी बांका बिहार से और यहाँ की तरफ से वॉइस मैसेज हुआ तो चलिए सुना जाओ क्या कहता नहीं है क्या
1: सोनी जी गुड आफ्टरनून मैं सुनील कुमार बांका बिहार से जुड़ गया हूँ आपके प्रोग्राम से और आज के प्रोग्राम में भोजपुरिया बहार में मेरी फरमाइश रहेगी गाना एल्बम है जिनका नाम है सैया जी सेल्फिश निकले ये दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली की मुख्य आवाज़ें हैं इसमें और ये गाना पहले तो आपको डेडिकेट है अमन भैया को है आकांक्षा जी हैं और वंशिका जी एम एस परमार जी हैं सोनू गौतम जी प्रिंस पासवान जी मुक्तिनाथ जी हैं सतीश शर्मा जी हैं और गौरव ठाकुर जी हैं नेकलस जी अरुण मंडल जी एम ताहिर जी बिजनौर से और रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा ये गाना डेडिकेट रहेगा धन्यवाद
2: याद नहीं आ रहा हमको कैमरा

0: अरे दरवाजा कहे बंद कर दी रे?
1: चुप रहिए, कुछ नहीं सुनेंगे हम। का बोले थे? सैया जी आप सेल्फी से निकले।
0: वो का होता है?
1: सैया जी आप सेल्फी से निकले।
0: सल्फास सुने थे, सल्फिस का होता है रे? तुम ही बताओ।

0: अभी सब मत बोलो।
1: सयाजी आप सेल्फी से निकले।
0: अरे गलती हो गया, सॉरी।
1: सयाजी सेल्फी से निकले। सयाजी
2: आई लव यू। अरे पगली आई लव यू।
3: तभी हमने के गाना सुनने सन सुनील कुमार जी के फरमाइश रहे जानकी रहे बाका बिहार से, और काफी बढ़िया गाने के फरमाइश। और यहाँ अनिल कश्यप जी लिखा था नहीं कि सैया जी के सब गलती ना होला, कुछ सजनी लोग के भी ओहो सेल्फी हो जाला। ऐसा कोनो बात नहीं है, सारा गलती सैया जी के ही रहला। अगर सजनी जी भी गलती करत रही तो ओकर दोष भी सैया जी पे ही होला। और आगे यहाँ मेहताब सिद्दीक की ज्वेलवनी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी लिखा था नहीं कि हाय सोनी जी का हाल चाल बटे, और हमार भी मैसेज बटे जी। हाँ बिल्कुल, और भी मैसेज पर लिखा था नहीं कि बहुत दिन बाद आपकी आवाज़ सुननी और बहुत ही अच्छा लागल, और हम भी एक गाना के फरमाइश भेजले बानी और सॉन्ग के नाम बटे तू कहबू तो हम मर जाइम। और ये सॉन्ग सुने के बटे तो बिल्कुल गाने के फरमाइश बा प्ले करम। और दुबई से जुड़ल बानी बहुत बहुत स्वागत बटे मेहताब जी रुआ के भी। और यहाँ राहुल पासी जी लिखा था नहीं कि गुड आफ्टरनून सोनी जी, हमार गाना अच्छा है। बिल्कुल राहुल, गाना भी बात तो चलाए के पूरा कोशिश बाटे, बना रही साथ में और एक एक करके सबके फरमाइश जोन बा प्ले करें। और यहाँ अशोक देशमुख जी जुड़ल बानी लिखा था नहीं कि सुनील कुमार जी के पसंद बहुत ही अच्छा लागल भोजपुरी में, और भाषा हमार समाज में नहीं आवेला लेकिन म्यूजिक मन के खुश कर देवेला। कोनो बात नहीं है, सुना सुना तो आदत हो जाए तो फिर धीरे धीरे सीख जाए मी भी भाषा, और भोजपुरी भी एगो भाषा ही अटक इतना भी मुश्किल नहीं है कि ना समझ में आई। और यहाँ सुनील कुमार जी के तरफ से वॉइस मैसेज बांटे तो चली प्ले कर जाओ, का कहते हैं सुना जाओ।
4: सोनी जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरी पसंद का गाना प्ले किया और सभी दोस्तों का फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से
3: बहुत धन्यवाद रोगा के भी शो में जुड़े खातिर। और अगला गाना हम प्ले करे जाता नहीं राकेश शर्मा जी के गाना के फरमाइश बात एंजॉय करी मनोज तिवारी की आवाज में। ससुरा बड़ा पैसा वाला के गाना बटे सैया जी दिलवा मांगे ले।

और अभी हमनी के ससुरा बड़ा पैसा वाला से काफी निमन गाना सुननी सन और गाने के फरमाइश करे वाला रनिया राजेश शर्मा जी और यहाँ की तरफ से मैसेज वाली के तनिक आर्य सोनी जी हमारे गाना बजावे खातिर दिल से धन्यवाद बटे और सभी दोस्त के धन्यवाद बटे फिर से ओहो फीडबैक देवे खातिर और आगे यहाँ मैसेज बटे राकेश शर्मा जी लिखा तनिक आर्य सोनी जी हमरो गाना बटे और गाना के लिए दिल से धन्यवाद बटे सभी दोस्त लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बटे रोहा के भी अनिल का सब्जी लिखा था नहीं कि मस्त सॉन्ग मजा आ गया सुन के तो चलिए ऐसे ही मजा ली आगे भी और भी एक से एक गाना आवे अला बटे बढ़िया बढ़िया गाना के फरमाइश बार राहुल पासी जी लिखा था नहीं कि आज स्वामी जी ना हम सोनी जी हैं और आपकी भाषा बहुत ही अच्छा लगा तटे अपना अच्छा हाँ हम लंच कर ले बने रुआ सभी बताएं कि रुआ सभी के लंच भैल कि ना और जेकर नहीं के भैल वो गाना सुनते सुनते साथ में लंच कर सका था और आगे यहाँ संदीप सुतार जी बने लिखा था नहीं कि हमने के सुनील कुमार के गाना बहुत ही पसंद आए तो चलिए अच्छा बात बटे और बहुत बहुत धन्यवाद बटे और अगला फरमाइश जोन बटे हमारा पास मेहताब सिद्दीकी जी के दुबई से तो चलिए इंजॉय करिए अपन गाना के राउर गाने के फरमाइश जोन बाटे की तू कहबू तो जिया बेरानी तू कहबू तो मर जाए तो इंजॉय करिए गाना प्ले हो चुका है।

और यहाँ राहुल पासी जी के तरफ से मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि गाना आज सुनी जी हमरा बहुत ही पसंद आई तो चली तो और भी अच्छा बात बाटे तो सभी को बहुत सारी गाना पसंद आओ तो एंजॉय करी दूसरे से गाना के फरमाइश करे वाला बानी मैं।

काफी बेहतरीन गाना के फरमाइश और फरमाइश करे वाला बानी मेहताब सिद्दीकी जी, और यहाँ के तरफ से मैसेज भी पहुँच गया लिखा था कि आज सोनी जी थैंक यू सो मच सॉन्ग बजावे खातिर, और आपके पास आप कैसन बानी और अच्छा लागल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर, और आगे यहाँ राजेश कुमार जी के तरफ से भी मैसेज बटे लिखा था नी की बहुत ही सुंदर फरमाइश, और अगला फरमाइश के तरफ रुक करें बिना देरी के, और जो उनकी अगला फरमाइश हमारा पास पहुँचल बाटे

पवन सिंह के आवाज में अगले गाने के फरमाइश बटे और गाने के फरमाइश करे वाला बानी कहाँ गई नहीं जी भुला गई नहीं का। और यहाँ संदीप कुमार जी बानी रोवा के तरफ से हिंदी गाने के फरमाइश और हम जौन की बार बार कहते नहीं कि रोवा से वे भोजपुरी गाने के फरमाइश करी कहे कि हम हिंदी गाना नहीं ही प्ले कर सकते आज के कार्यक्रम में कौन कहे कि इसे फॉर सिर्फ भोजपुरी या धमाल कार्यक्रम हो भोजपुरी में हो ये मैं जौन की बात कही जब भोजपुरी में होता तो गाना भी भोजपुरी में ही सुनल जाए। तो फिलहाल यहाँ एंजॉय करी सुभाष तिवारी जी के गाना पवन सिंह के आवाज में गाना प्ले हो चुकल बटे।

एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ सबे के। और रुआ सबे से हम ये कहें कि जो भी गाने के फरमाइश अगर रुआ सबे करते हैं तो बढ़िया बढ़िया गाने के फरमाइश करी, कौन ऐसा फालतू गाने के फरमाइश ना करी जेकेरा के सुन के कोई के परेशानी होते, तो अच्छा अच्छा गाने के फरमाइश करी रुआ सबे से, ये हमारा निवेदन बटे। और यहाँ मैसेज के बात करी तो काफ़ी सारा मैसेज बा, फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश के तरफ हम बढ़े। और जॉन के अगला फरमाइश हमारा पास बाटे, डॉक्टर मुक्तिनाथ जी बानी और यहाँ के पवन सिंह के आवाज में गाना सुने के बाद तो चली रहा, और गाना भी प्ले कर तनी दिलवा ले जा रुमाल में, एंजॉय करी गाना के।

0: गाना सुने सन गाने के फरमाइश सुन के पहुँचा रहे डॉक्टर मुक्ति नाथ जी के तरफ से काफ़ी बढ़िया गाने के फरमाइश रहे। और यहाँ मेहताब सिद्दीकी जी कहते हैं कि हमने के मैसेज जैसे भी लिखी सन रहुआ मैसेज के सही करके पढ़ देवे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खातिर। और यहाँ सुनील कुमार जी बानी वॉइस मैसेज पहुँचल बा तो चलिए सुनल जाओ का कहते हैं यहाँ के।
1: सोनी जी नमस्कार, मैं सुनील कुमार बांका बिहार से, और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भोजपुरिया धमाल लेके आए हैं, बहुत अच्छी बात है और अच्छी आपकी प्रस्तुति भी है, लेकिन थोड़ा सा जो है फरमाइश का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी अश्लीलता गानों में ना हो, और आप प्रोग्राम कर शुरू करने से पहले थोड़े आगाह कर दीजिएगा। सभी श्रोताओं के लिए है मेरा ये मैसेज, क्योंकि आपके इस प्रोग्राम से बहुत सी बहन बेटियां भी जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए थोड़ी सी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऊट पटांग जो है आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अश्लील गाने बने हुए हैं, ताकि उनकी फरमाइश जो है ना चले, तो बहुत ही अच्छा लगेगा सभी श्रोताओं को और हम सबको, आपका भी आत्मसम्मान बना रहेगा। धन्यवाद
0: रोवा के भी बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और ये बात तो हम बिल्कुल बोले नहीं, और ये बात हमके लगा था जहाँ तक कि बोले की जरूरत नहीं थी, लिसनर लोग के खुद इतना समझदार हो गए कि चाहे कहे कि वो गाना के फरमाइश बिल्कुल एक लिसनर के बाद, लेकिन सुनने वाला अकेले नहीं कि बहुत लोग सुना तटे, तो सबके फरमाइश के ख्याल रख के और सबके पसंद के ख्याल रख के गाने के फरमाइश करी लोग, कहे कि बहुत लोग बात जे कि परिवार के साथ सुने ला तो ऐसा कोनो गाने के फरमाइश ना करी, और ये बात हम बिल्कुल बोलनी है। और फिर भी जो गाना हमको समझ आ जाता हो तो हम पहले ही छाट देवे नहीं, और जो ना समझ में आवेला वह प्ले हो सकता अटे, लेकिन एक खातिर माफ़ करें हम लोग। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश जोन हमारा पास बाटे, उससे पहले यहाँ मैसेज बाटे लिखा था नहीं कि अखिया में बस, अच्छा अखिया में बस गई लूँ तू, दिल के धड़कन बन गई लूँ तू, अब हर सांस में नाम तो हर जिंदगी के पहचान बन गई लूँ तू। और मैसेज के साथ अनिल कश्यप जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे यहाँ मैसेज बाटे बागेश्वर निषाद जी बानी लिखा था नहीं कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा बा, हम लोग गाना बाजी हैं बिल्कुल गाने के फरमाइश बात है प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे। राहुल पासी जी लिखा था नहीं कि आरती सोनी जी यह सॉन्ग हमारा के बहुत ही अच्छा लगा, सॉन्ग के कर फरमाइश रहे और आज 100% प्रियंका जी बहुत बहुत धन्यवाद बटे शो में जुड़े खाते। और संदीप सुतार जी बानी लिखा था आरती सोनी जी हमारे भोजपुरी गाना बाटे और ओकरा के प्ले करी बिल्कुल गाने के फरमाइश बा प्ले करें। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश जोन बा हम प्ले करें हमरा पास पहुँचल बाटे तू सागर तू हवा सागर, और गाने के फरमाइश करे वाला बानी पूजा भास्कर जी, तो एंजॉय करी अपन गाने के फरमाइश जोन बा। राउर प्ले हो चुकल बा

तभी हमने के गाना सुनने सन गाने के फरमाइश करे वाला रनिया पूजा भास्कर जी काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश और यहाँ बबीता देवी जी बानी लिखा तनी के सोनी जी बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहा बानी और भोजपुरी तड़का लग रहा बाटे और हमरो गाना बाटे गाना चला दे हम इंतजार करो तनी जी बिल्कुल गाने के फरमाइश बात और गाना भी फरमाइश जन बा प्ले करे के पूरा कोशिश बाटे और यहाँ लिखा तनी के आज सोनी जी ये गाना बहुत ही बढ़िया लागल और मिस पूजा भास्कर जी के धन्यवाद देत बानी अच्छा गाना चलावे खातिर दिल से धन्यवाद बाटे आपके भी और यहाँ राजेश कुमार जी बानी लिखा तनी की सुपर फरमाइश बहुत बहुत धन्यवाद बटे और यहाँ अगला फरमाइश जो हमारे पास पहुँचल बटे गाने के फरमाइश बटे

और अभी हमने के गाना एंजॉय करनी सन जॉन की फरमाइश पहुँचा रहा उत्तर प्रदेश अशोक पाल जी के तरफ से काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश और यहाँ मैसेज पहुँचा रहा पूजा भास्कर जी के तरफ से लिखा तनी के धन्यवाद दी और सुनी सी बहुत बहुत धन्यवाद बटे रुआ के अभिषेक तिवारी जी लिखा तनी की हमरो गाना बाजी की ना बिल्कुल बाजी राहुल भी गाना के फरमाइश बटे और यहाँ लाइव चैट के तरफ रुक करें तो यहाँ रेनबो लवर जुड़ल बानी पूजा भास्कर जी बानी राहुल पासी जी वानी एम डी फैज आलम जी वानी बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ सभी के और माफी चाहम कहे कि हम चैट के तरफ ध्यान ना दिले रहनी या रूबीना नाज जी वानी बहुत बहुत स्वागत बटे आप सभी के भोजपुरिया धमाल में और फिलहाल ये अगला फरमाइश जोन हमरा पास पहुँचल बैठे धनेश मिश्रा जी के और गाने के फरमाइश जोन बा जेकरा से लव कलू इंजॉय करी गाना के।

0: एकरे के चढ़ाई सब
1: तभी हमनी के गोलू राजा के आवाज में काफी बेहतरीन गाना एंजॉय करनी सन सैड सॉन्ग और गाने के फरमाइश करे वाला रनिया धनेश मिश्रा जी दिल्ली से और यहाँ काजल झा जी के तरफ से भी मैसेज पहुंच गेल बा गाना काफी एंजॉय करनी। राहुल पासी जी लिखा तनी कि अभी जो सॉन्ग चल रहा है बहुत ही बढ़िया सॉन्ग रहे और गाने के फरमाइश जो रहे कैले रही धनेश मिश्रा जी। और आगे यहाँ मैसेज बा लिखा तनी कि ये गीत में भी मर्दे के दोस्त नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल रुआ तो ये बोले मार मैसेज करे वाला बानी अनिल कश्यप जी। फिलहाल अगला फरमाइश जोन हमरा पास बा दिलवा लागल बा तोहरे से सनी जी जुड़ल बानी गोपालगंज से बहुत बहुत स्वागत बा। तो एंजॉय करी गाना के फरमाइश जोन।

हमारा भिमनी के गाना सुननी सन गाने का फरमाइश करे वाला रनी है सनी जी गोपालगंज से। और काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश यहाँ के तरफ से, तो केकरा से दिल लागल बा इहो जरूर बताएं सनी जी। और यहाँ राजेश कुमार जी के तरफ से मैसेज बा लिखा था कि बहुत ही निक लागल भोजपुरी गाना, बहुत बहुत धन्यवाद बटे। और यहाँ काजल झा जी के तरफ से भी मैसेज बा कि हमरो गानवा बात सुनी जी। जी हाँ बिल्कुल, और भी गाना बटे और प्ले करे के पूरा कोशिश बा। और यहाँ पूजा भास्कर जी लिखा था कि अभी के सॉन्ग झकास बा और प्रोग्राम भी सुपर से ऊपर चल रहा बटे, बहुत बहुत धन्यवाद बा। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश जौन हमारा पास बटे एम डी फैज आलम जी जुड़ल बानी और यहाँ के तरफ से गाने का फरमाइश बाते, एंजॉय करी बलमा बलमा कहे चुड़ी कंगनवा गाना प्ले।

और अभी हमने क्या गाना एंजॉय किया, निशान एमडी फैज जी के फरमाइश रहे, काफ़ी खूबसूरत गाने के फरमाइश। और यहाँ राहुल पासी जी जुड़ल बनी और लिखा तनी कि आज भी गाना चला था मस्त मस्त, और धन्यवाद दे तनी सबको क्या। प्रियंका जी आयल बनी आपके प्रोग्राम में, ओहो तो बहुत बहुत स्वागत बटे प्रियंका जी के भी, और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद बटे। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करें जोन के हमारा पास पहुँचल बा कोई आई परदेसी हमसे प्यार करेला। एमडी गुलबाज जी जुड़ल बनी तो इंजॉय करिए अपन गाना के, गाना प्ले हो चुकल बा।

0: और अभी हमने के गाना सुनी सन के हु आई परदेसी हमसे प्यार करेला और गाने के फरमाइश करे वाला रनी एमडी गुलबाज जी काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश और फरमाइश करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। और यहाँ राहुल पासी जी के तरफ से मैसेज बाटे लिखा तनी कि कोई आए परदेसी हमसे प्यार करेला बहुत ही प्यारा सॉन्ग लागल धन्यवाद देता नहीं फरमाइश करे वाला भाई के। और आगे यहाँ मैसेज एक और बाटे वॉइस मैसेज पहुँचल बात चली सुनल जाओ का कहता नहीं।
1: आरजे सोनी जी नमस्ते, मैं अनिल कश्यप सिवान बिहार से। और परदेसी कैसे जाइए, यहाँ तो बारिश होता है। तो गाना तो बहुत बढ़िया लागल है के वाई परदेसी हमसे प्यार करेला, लेकिन परदेसी के साथ मुसीबत बा कि बारिश आ गई बा और बारिश में भिजत ना जाइए चाहे कुछ भी हो जाए।
0: कोनो बात नहीं क्या, हमरा यहाँ बारिश नहीं क्या हो तोने से भीज के आए और यहाँ तो एकदम पूरा धूप निकल बटे तो यहाँ आके सूख जाए। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश के तरफ बढ़े मुझसे पहले एक और यहाँ मैसेज बांटे लिखा था नहीं कि चलल करे बबनी ओढ़नी संभार के बागेश्वरी साह जी की तरफ से गाने का फरमाइश बात है बिल्कुल प्ले करे के पूरा कोशिश बांटे बहुत बहुत स्वागत बा। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश हम प्ले करें यहाँ विशाल पांडे जी जुटे बनी बहुत बहुत स्वागत बांटे। और अगला फरमाइश जो बांटे अनिल कश्यप जी के ये बलमा परदेसी तो इंजॉय करी गाने के अपन

गाना तो काफी बढ़िया रहे और गाने के फरमाइश करे वाला रनी अनिल कश्यप जी, और यहाँ के तरफ से मैसेज भी पहुंच गल वाली खतनी के दिल से धन्यवाद बटे। और अच्छा बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद बटे लोगों के विषय में जुड़े खातिर। यहाँ और भी मैसेज बटे लिखा था नहीं कि ये बलमा परदेसी बहुत ही अच्छा, धन्यवाद अनिल जी के गाना बजाए खातिर। और यहाँ निशा राय बोले जुड़ल बहन लिखा तनिक हाय सोनी जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत बटे रोगा के भी। और अगला फरमाइश जो हमारा पास पहुंचल बटे गाने के फरमाइश, ओ गोरी चोरल चोरी चोरी मिलल ठीक नहीं के बागेश्वर निशा जी के फरमाइश बात एंजॉय करी। रोगा गाने के भी फरमाइश जो हमारा प्ले हो चुकल बटे।

काफी खूबसूरत गाना। और यहाँ राहुल पासी जी के तरफ से भी मैसेज बैठे लिखा था नहीं कि नई सॉन्ग आज सुनी थी, बहुत ही प्यारा सॉन्ग बज रहा बैठे जी हाँ। और आगे और मैसेज और फरमाइश, और फिलहाल ही अगला फरमाइश जोन हम प्ले करें, काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश बैठे। निशांत राय बोले जी बानी अमरावती से, और यहाँ के तरफ से गाने के फरमाइश बा लागी नई छुटे रामा फिल्म से, लाली लाली गोठवा से, और ये गाने के फरमाइश। एक और अब्दुल जबार अंसारी।

हम निके काफी खूबसूरत गाने का फरमाइश एंजॉय कहनी सन और फरमाइश करे वाला रनिया निशांत राय बोले जी और अब्दुल जवार जी दोनों जन के तरफ से गाने के फरमाइश रहे, काफ़ी खूबसूरत गाने के फरमाइश रहे। और यहाँ विष्णु चंद्र जी जुड़ल बनी लिखा तनी कि आज सोनी जी गाना तो बहुत ही अच्छा चल रहा बा और हमारे गाने के भी फरमाइश रहे, थोड़ा देर खातिर कहीं चल गए नहीं गाना प्ले हो गया बाकी ना तो बिल्कुल और गाने के फरमाइश जौन बा प्ले नहीं के बल कहे कि रवा तरफ से गाने के फरमाइश जौन बा हिंदी गाने के फरमाइश पहुँचल बात तो इनमें हम सिर्फ भोजपुरी गाने के ही फरमाइश प्ले कर सकते हैं। तो अगर गाने के फरमाइश चेंज करे चाहते नहीं तक कर सकता नहीं प्ले करे के पूरा कोशिश रही। और यहाँ राहुल पासी जी की तरफ से मैसेज वाली कहते नहीं कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग चला था और हमारा गाना भी बजा दें। बिल्कुल राहुल भी गाने का फरमाइश बार प्ले करें। यहाँ अनिल कश्यप जी की तरफ से मैसेज बांटे लिखा तनिक सुपर सॉन्ग और मीठी मीठी बोलिया रसूलाल जी। हाँ बिल्कुल काफ़ी बढ़िया गाने के फरमाइश रहे। और अगला फरमाइश की तरफ बढ़े और अगला फरमाइश जौन हमारा पास पहुँचल बटे विशाल पांडे जी की तरफ से तो इंजॉय करिए अपन गाना के और गाने के फरमाइश बटे तोहरे करनवा।

0: और अभी हमने के गाना एंजॉय करनी सन गाने का फरमाइश करे वाला रही है विशाल पांडे जी गोपालगंज से, काफी खूबसूरत गाने के फरमाइश। और यहाँ विष्णु चंद्र जी की तरफ से मैसेज वाला लिखा था नहीं कि आज सोनी जी उम्मीद है कि हमारा गाना जरूर चलेगा, है कि अहो हमारा गाना सिलेक्ट करके रखे रनी और एक मतलब गाना रिजेक्ट हो चुका बस। जी हाँ बिल्कुल, जितना हिंदी गाने का फरमाइश पहुँचा रहे हमारे पास सारा के सारा गाना रिजेक्ट कर चुका बानी। और हम बोल रही है कि दोबारा से गाना के फरमाइश कर सकता नहीं रोआ से भी भोजपुरी गाने के, क्या कि हिंदी गाना हम सब रिजेक्ट कर दिले बानी। और यहाँ अगला फरमाइश जौन बा हमारा पास राहुल पासी जी के पहुँचल बाटे, तो इन्जॉय करी नीलकमल के आवाज़ में सोता हूँ दुपट्टा तेरा ओढ़ के, यानी गाना के बोल बाटे जुदाई प्ले हो चुकल बा गाना।
1: बिहार मस्ती.in

0: masti.in.
1: तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हारे बारे में अब कोई बात नहीं करते, तुम्हें सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, पर जरा सा भी भूला नहीं हूं तुम्हें, वो अलग बात है कि तुम हमें याद नहीं करते।

0: और अभी हमने के गाना एंजॉय करते हैं राहुल पासी जी के फरमाइश बटे नीलकमल की आवाज में जुदाई। और यहाँ की तरफ से मैसेज भी पहुंच गया, लिखा था नहीं कि थैंक्स गाना बताया खतीर और आगे और भी कई सारा मैसेज शामिल कर दिए। लेकिन यहाँ आरजे वंशिका जी भी जुड़ चुका बनी, बहुत बहुत स्वागत बटे रोगा के भी कार्यक्रम में। और गाना सुने के बाद अपन गाने की फरमाइश भेज सकते नहीं। फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश जो हमारा पास बबीता जी के तो एंजॉय करिए अपन गाने के, और गाने की फरमाइश बटे हम तो बबली बोला था नहीं तो गाना प्ले हो चुका था, बबीता जी एंजॉय करिए।
1: भगवान जी बामन हो जाए चेंज कबले होई हमार लाइफ स्टाइल
2: चला।
1: हे भगवान जी बामन हो जाए चेंज कब होई हमार लाइफ स्टाइल
2: दिने में सपना मौत दे।

और अभी हमने के गाना सुनने सन गाना के फरमाइश करे वाला रनिया बबीता देवी जी और अगला फरमाइश जो हमारा पास था बिना देरी प्ले करें रुबीना नाज जी के सखिया रे सखी एंजॉय करिए अपन गाना के फरमाइश जोन बार और प्ले हो चुकल बा।

और अभी हमने के गाना सुनने सन गाने के फरमाइश करे वाला रनिया रुबीना नाज जी का भी खूबसूरत गाने के फरमाइश। और यहाँ राहुल पासी जी के तरफ से भी मैसेज पर लिखा तनी कि नाइस सॉन्ग बबीता जी के, धन्यवाद दे पानी। और अगला फरमाइश जोन हमारा पास पहुँचल बाटे गाना के फरमाइश करे वाला बानी अभिषेक तिवारी जी। तो गाना के फरमाइश बा नेताजी ले जाई दिल्ली, तो एंजॉय करी गाना के राहुल गाने के फरमाइश जोन बा प्ले हो चुकल बा।

0: और अभी हमने के गाना सुनने सन अभिषेक तिवारी जी के गाने का फरमाइश है और यहाँ विष्णु चंद्र जी के तरफ से मैं सुबह लिखा था नहीं कि भोजपुरी सॉन्ग जी हाँ बिल्कुल भोजपुरी गाना के ही फरमाइश करी और गाने की फरमाइश जरूर प्ले करें। और यहाँ मनीष पांडे जी जुड़ चुकल बनी बहुत बहुत स्वागत बटे और गाने की फरमाइश बताए प्ले करे के पूरा कोशिश बा। फिलहाल यहाँ विष्णु चंद्र जी के तरफ से गाने का फरमाइश पहुँच गए बाकी हाथ में मोबाइल उनके एंजॉय करी गाने के फरमाइश जन बार और प्ले हो चुकल बटे।
1: हेलो कौन?
2: अरे चिन्हत नहीं खी उहे बोलते नहीं उहे भेट उठ नहीं हुई का
1: जी नहीं मेरे पास टाइम नहीं है बुझला
2: बुझे।

और हमको लगा था कि अमन जी के गाने के फरमाइश जान बार से डाउनलोड नहीं किया, बस तो चलिए अगला फरमाइश हमने के एंजॉय कर जा मनीष पांडे जी की तरफ से गाने के फरमाइश बार तू ही तो जान हो। तो चलिए राहुल गाने के फरमाइश जान बा प्ले हो चुका।

फरमाइश एंजॉय करिए। फिलहाल यहाँ गाना जो हम छे भाई बैठे गाना के फरमाइश करे वाला बानी मनीष पांडे जी, और अगला फरमाइश जोन हमरा पास पहुँचल बाटे आर्ज अमन जी के, माथा फेल हो गए। तो चलिए इंजॉय करिए रघु अभी अपन गाना के।

रवि हमनी के गाना सुनली सन आर्जा मन जी के फरमाइश रहे। और यहाँ संदीप सुतार जी जुड़ल बन लिखा था आर्जा सोनी जी अपने। अच्छा हमरो गाना के हिंदी गाना समझ के हटा दिल मैंने लगा था हमारा गाना प्ले ना हुई तो हम लोग को बता दी कि राउर गाना तो कब के प्ले हो चुकल बा रोगा नहीं कि सुन ले ई राउर गलती बाटे। अगर गाना के फरमाइश के लिए बनी लो तो ध्यान से सुनी लो कह कि एक एक करके हम सबके गाना प्ले के लिए बनी। राउर गाना तो कब के प्ले हो चुकल बाटे राउर फरमाइश करे के जस्ट बात कहीं। और फिलहाल यहाँ अगला फरमाइश जोन हमारा पास पहुँचल बाटे गाने के फरमाइश करे वाला बानी लुधियाना पंजाब से प्रमुख जी। तो इंजॉय करिए अपन गाना के और गाना के फरमाइश बा नैना लागल नहीं के सागर। तो एंजॉय करिए अपन गाना के।

बानी। बहुत बहुत स्वागत बटे रउआ के भी लिखा तनी। गुड इवनिंग मैम जी, आज टाइम निकाल के हम भी प्रोग्राम से जुड़ल बानी। प्रोग्राम से जुड़नी बहुत बहुत स्वागत बटे, लेकिन प्रोग्राम समाप्ति के समय हो चुकल बा। लेकिन लास्ट में ही अली अच्छा लागल, और यहाँ बहुत लोग के मैसेज बाटे। गुरबाज जी लिखा तनी कि हमार गाना कब प्ले हुई, तरुआ कान बंद करके सुना तनिका। तब से चैट में तरुआ लाइव तब से दिखते बानी, और फिर रहुआ अपन गाना कैसे ना सुननी जरूर बताएं। फिलहाल इंजॉय करी प्रमुख जी के गाना के। राहुल गाना

और बहुत ही निमन गाना के फरमाइश रहे प्रमुख जी के तरफ से, और ये गाना रेनबो लवर जी के तरफ से भी रहे। और आगे यहाँ नागेश्वर जी के तरफ से मैसेज भी लिखा था कि मैम हम नागेश्वर धाकड़ना उनकर बहन रानी है। ओहो बहुत बहुत स्वागत बटे रुआ के भी, और पहली बार रुआ से बात होता टे बहुत ही अच्छा लागल। ऐसे ही जुड़त रही हमारा कार्यक्रम में, बहुत ही अच्छा लगी। और 1:30 बजे से आई अभी शो के समाप्ति के समय पर, तो रुआ सबे दी हमरा के जाए की इजाजत। और फिलहाल जाते जाते रुआ सबे खातिर एगो गाना छोड़ के जाए, इंजॉय करी, और फिर मुलाकात हुई अगला शनिवार के दोपहरिया के 1:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।

बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 p.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: ये कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता है।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए हॉटस्टार अंताक्षरी और खेलिए अंताक्षरी लाइव शो में। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, आ चुका हूं लेकर आज का बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है स्टार अंतरा मस्ती। बिल्कुल मस्ती करने वाले आज हम सभी। लेकिन और बता दूं कि कल है अंताक्षरी, बिल्कुल यानी पांचवा रविवार है, तो और हर पांचवें रविवार को होता है अंताक्षरी। तो अंताक्षरी के दिन आप मुझे मैसेज से भी अपने जो भी गाने के बोल है भेज सकते हैं, या आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप करें, मेरे जो नंबर है 9135841232 वहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल रहेगा कल अंताक्षरी खेलने। और जिनको गाने गुनगुनाने का शौक है वो कॉल जरूर करें, जिनको मैसेज करना है वो मैसेज कर सकते हैं, उनके भी गाने शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए आज अंतरा मस्ती में, और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

भारी भाई ये गाना। और ये लाइन

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे दीवाना बना दे दीवाना बना दे। बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं और सबसे पहले आज जुड़ने वाली हैं यानी प्रीति रायदास जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, सर्वेश भगत जी जुड़ चुके हैं और संगीता अम्बुलकर जी जुड़ चुके हैं, पीकू राय जी जुड़ चुके हैं, जाकिर खान जी हैं और साथ ही साथ आरजे पंचिका जी हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन में देखूँ तो सर्वजीत शेट्टी जी भी हैं, राजेश कुमार जी भी हैं और हमारे ये विजय राज जी हैं, मुबारक हुसैन जी हैं, आदित्य सिंधी जी हैं, पीकू राय जी हैं और रविंदर गोरखपुरी जी हैं और दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, मतलब सभी का वेलकम करते हैं। जो भी दोस्त चोरी चोरी चुके चुके सुनते हैं उनका भी वेलकम करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस गाने के साथ और इस गाने से शुरू होता है अंतरा मस्ती। तो नाउ लेट्स प्ले।

और जो भी दोस्त अब जुड़ेंगे तो व्हाट्सएप से, क्योंकि सारा मैसेज व्हाट्सएप पे करना है, कॉलिंग भी व्हाट्सएप से होगी, इसलिए आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना होगा। ज्योति खटवाड़े जी, वेलकम है आपका भी। और नीतू जी, आपका भी वेलकम है। नीतू सरन जी,

तो दोस्तों यहाँ से शुरू होता है अंतरा। अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजें 9135841232 पे, यानी 9935844132 पे, सिर्फ व्हाट्सएप करने हैं। और आज मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, माय गॉड कैसे शो करूंगा, समझ में नहीं आ रहा है।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना दे। माय गॉड, आज तो सिर का दर्द कह रहा है कि मैं ही हूँ। फिलहाल मेरा पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है सर्वजीत सेठी जी का। अच्छा जी, और हमारे सोनू गौतम जी हैं, और सुनील कुमार जी हैं, और जाकिर खान जी हैं, प्रमोद कुमार जी हैं, संगीता मुलकर जी हैं, ज्योति खरबड़ जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, सरवेज भगत जी हैं, दीपक कुमार जी हैं, रूपचंद जी हैं, आरिफ सिंध जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं, सतीश शर्मा जी हैं, ओके, और नीतू शरण जी हैं, और पीकू राय जी हैं, और ये विभूति भूषण शरण जी हैं, एम ताहिर जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं एम ताहिर जी, और साथ ही साथ बहुत से दोस्त हैं। सभी का वेलकम करते हुए सीधे कॉल लगाते हैं सर्वजीत सेठी जी को।

0: सर्वजीत सेठी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंतराम मस्ती में। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ समझ जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं एकदम, बस सिर में बहुत ज्यादा दर्द है आज थोड़ा।
1: और सर टैबलेट लेनी पड़ेगी आपको
0: लग तो रहा है, लेकिन मैं स्टूडियो से बाहर जाऊंगा कैसे टैबलेट लेने के लिए, नहीं जा सकता। ओके, तो बताइए आज अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुना है आपने?
1: सर मेरा फेवरेट है और आपका फेवरेट है, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया।
0: हाँ, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, सच में मिल गया है। एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। तो इस अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135 841232 पे, यानी 9135 84 12 32 पे।

0: मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला मैसेज पहुंचा है हमें ज्योति खटवड़े जी का, सोनू गौतम जी का, सुनील कुमार जी का, प्रमोद कुमार जी का, सतीश शर्मा जी का, रूपचंद जी का, सर्वेश भगत जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ का, राजेश कुमार जी का, विष्णु चंद्र जी का, विभूति भूषण जी का, सर्वजीत सेठ जी का, आरिफ सिंधी जी का और बहुत से दोस्तों का। तो सीधे मैं कॉल लगाता हूँ ज्योति खटवटे जी को। ज्योति जी आइए। ज्योति खटवटे जी आपका बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। कैसे हैं आप?
1: ठीक हो? आप कैसे हो?
0: एकदम झकास, बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में, चकाचक, गारंटी के साथ। हाँ बताइए। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुना है आपने?
1: मैं एक बात करना चाहती हूँ।
0: जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल।
1: आज वंशिका जी का जो प्रोग्राम था ना,
0: हाँ हाँ,
1: उस सुबह आपने 11 बजे रखा है, तो कोई लेडीज ज्यादा पार्ट नहीं ले पाई।
0: अच्छा,
1: और टाइमिंग बहुत ऑड है ना, तो कुछ बदल सकते तो बदल देना।
0: एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली 11 बजे से शुरू होता है उनका, 1 बजे तक होता है, ठीक है, और 1:30 बजे से आरजे सोनी जी का प्रोग्राम आज के दिन भोजपुरी स्पेशल होता है, और शाम के 4:30 यानी 4:45 बजे से होता है आरजे आकांक्षा जी का शो, और उसके बाद से अब बीच में कहीं जगह है ही नहीं, इसके लिए उनको वहां पे शिफ्ट किया गया है। एक्चुअली वो फिल कर एक प्रोग्राम लेके आने वाली है 11 बजे इन संडे को, वो आता है, यानी वर्ड मस्ती आता है उनका।
1: वो चलेगा, लेकिन ये सैटरडे का बहुत ये लग रहा है।
0: एक्चुअली क्या है कि अब
1: कोई कोई भी आज लेडीज कोई नहीं था आज तो।
0: अच्छा,
1: सिर्फ जेंट्स ही थे आज। हाँ,
0: कोई बात नहीं,
1: मैं ही अकेली थी मैं आज।
0: अच्छा, आप ही अकेली थी, कोई बात नहीं, आप थी ना कम से कम एक। अच्छी बात है। फिलहाल एक्चुअली उनके शो के लिए और कोई समय मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आरजे सोनी जी का भी शो चल रहा है, 1:30 बजे से था, और फिर और उनका शो लंबा होता है, कम से कम 3 घंटे का शो तो उनका होना ही होगा, उसके बाद ही हो पाएगा। बीच में आरजे कंसा जी का शो है, फिर हमारा शो है, बीच में समय कहाँ है अब आप ही बता दीजिए मुझे, तो मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये मुझे बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप?
1: वही धीरे धीरे से मेरे जिंदगी।
0: सच में धीरे धीरे से नहीं, जल्दी जल्दी से आ जाना।

और इस गाने की हर लाइन बहुत प्यारा है, लेकिन यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। अंतरा में शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9135841232 पे सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है।

बिल्कुल धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और दिल को चुराना, और तो और खास बात है कि चुराही ती ली है ऑलरेडी, दोबारा चुराने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है सोनू गौतम जी का, ज्योति खटवाड़ जी का, संगीता अम्बुलकर जी का, अनिल कश्यप जी का, सुनील कुमार जी का, सुनीता गोप जी का, दीपक गायकवाड़ जी का, प्रमोद कुमार जी का, फिकू राय जी का, और सतीश शर्मा जी का, जाकिर खान जी का, रूपचंद जी का, ये विभूति भूषण जी का, सरोजी सरोजी जी का, विष्णु चंद्र जी का, काजल झका जी का, राजेश कुमार जी का, सर्वेश भगत जी का, आरिफ सिंधी जी का, नीतू सरन जी का, बरजू जी का, विशाल अंकल जी जुड़ चुके हैं। वेलकम करते हैं और कॉल लगाते हैं सीधे हम सोनू गौतम जी को।

0: सोनू गौतम जी, अंतरामस्ती में आपका बहुत बहुत वेलकम है जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है सर, थैंक यू। हम बताएं कैसे हाल चाल है आपके?
0: अरे हम तो बहुत ही झक्कास हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं, मजे में हैं, चकाचक गारंटी के साथ एकदम।
1: सर में दर्द हो रहा है थोड़ा सा।
0: बस वो तो है, वो भी एक साइड है, यानी दाहिने साइड है, सिर्फ आधा ही दर्द कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है।
1: अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा।
0: ठीक हो जाएगा सोने के बाद।
1: जी जी।
0: फिलहाल बताइए, अंतर के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: अगर जिंदगी हो तेरे संग।
0: सच में सच में, ये मेरे दिल की बात आपने कह दिया। अगर जिंदगी होते तेरे संग, नहीं तो कोई जरूरत नहीं जिंदगी की। क्या क्या फायदा है इस जिंदगी का, है कि नहीं?
1: जी जी, रेडियो हॉट स्टार के संग हो।
0: ओके,
1: अगर जिंदगी हो।
0: सच में एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: थैंक यू सर,
0: वेलकम जी।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। तो इस अंतरे में आए जो भी शब्द आप सुनेंगे उन शब्दों में से कोई भी गाना लिखकर मुझे भेज सकते हैं 9135841232 पे। इस अंतरे में जो भी शब्द है उन्हीं शब्दों पर ध्यान देना है आपको, बस उन्हीं शब्दों को फॉलो कीजिए और अपना गाना लिख भेजिए मुझे।

मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। सबसे पहले मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है नीतू शरण जी का, आरजे सोनी जी का और एम ताहिर जी का। एम ताहिर जी इतना लंबा मैसेज लिखेगा, बार बार नाम और एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन गाने का बोल ही काफी है, नहीं तो आप पीछे हो जाइएगा। और अनिल कश्यप जी हैं और सुनील कुमार जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, जाकिर खान जी हैं और सुनीता गोप जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, प्रमोद कुमार जी हैं, विभूति भूषण शरण जी हैं, सतीश कुमार जी हैं और रूपचंद गोयल जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, इंडियन की विष्णु चंद्र जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं और हमारे सुंदर पाल जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, एक साहब और भी हैं, नाम तो मुझे पता नहीं चल रहा इनका, निशांत राय बोले। अच्छा ओके, इन्होंने दूसरे नंबर से कॉल किया है, नो प्रॉब्लम। काजल झक्का जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, बिरजू जी हैं, अब्दुल जब्बार अंसारी जी हैं, तो सीधे कॉल लगाते हैं नीतू शर्मा।

0: नीतू जी अंतरम स्त्री में आपका बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत।
1: हेलो
0: जी, बोलिए कैसी हैं?
1: हाँ अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं तो बहुत अच्छा हूँ, एकदम झक्कास बिंदास, फर्स्ट क्लास, मजे में, चक चक एकदम मजे में, बोले तो लय भारी।
1: हम भी अच्छे हैं।
0: अच्छी बात है, बस ऐसा आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे, है ना?
1: हाँ, ये प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू सो मच, आप पार्टिसिपेट करती हैं, अच्छा लगता है मुझे भी आप सबसे बातें करना, क्योंकि आज ही का दिन तो मुझे मौका मिलता है आप सबसे बातें करने का, है कि नहीं?
1: हाँ।
0: बिल्कुल, तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुना है आपने?
1: दिल है कि मानता नहीं,
0: सच में दिल नहीं मानता है, बस सिर्फ
1: उन्हीं दिल की मानता नहीं पिक्चर का ही गाना है। दिल है कि मानता नहीं, ये बेकार बेकर ये बेकरारी क्यों हो रही है,
0: जानता नहीं,
1: जानता ही।
0: हाँ, गुनगुनाती तो और अच्छा लगता है।
1: गा करके सुना है?
0: हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, सुनाइए।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। अंतरे में आए शब्द से आप मुझे गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, यानी 9935841232 पे। और ये जो लाइन है ना, बहुत प्यारा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि दिल चाहता है उन्हें देखता ही रहूं हमेशा, अभी भी देख रहा हूं।

0: दिल है कि मानता नहीं मानता नहीं मानता नहीं। और सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा है यानी प्रीति राय दास जी का, आरजे वंशिका जी का, प्रमोद कुमार जी का, ज्योति खटवड़ जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, जाकिर खान जी का, सुनील कुमार जी का, नंदलाल यादव जी का, राजेश कुमार जी का, बिरजू जी का, एम ताहिर जी का, रूपचंद गोयल जी का, संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, सुनीता गोप जी का, विष्णु चंद्र जी का, बाबूलाल अंजाना जी का, सर्वेश भगत जी का, सर्वजीत शेट्टी जी का, विभूति भूषण जी का, निशांत राय बोले जी का, अब्दुल जब्बार जी का और नीतू शरण जी का। कोई बात नहीं, फिलहाल कॉल लगाते हैं प्रीति राय दास जी को। बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद। कैसी है प्रीति राय दास जी?
1: थैंक यू, अच्छी हूँ।
0: वेलकम जी।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और पिछले हफ्ते जो इन प्रोग्राम का आगाज हुआ था आपके कॉल से हुआ था, लेकिन आज बहुत देर कर दी हुजूर आते आते मतलब आप है कि नहीं?
1: नंबर नहीं आ रहा था मेरा।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, नहीं आता है तो मतलब अभी आ गया है ना फाइनली?
1: आ गया।
0: बताइए तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई है? अगर गाइएगा तो और अच्छा लगेगा।
1: गा कर बताओ।
0: हाँ हाँ, और अच्छा लगेगा।
1: लेकिन लेकिन सोची ही नहीं
0: लेकिन थोड़ा सा गा दीजिए, अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, गाना के बोल बता सकती हैं।
1: पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ, मेरी नींद गई, चैन खोने लगा, कुछ तो होने लगा।
0: लेकिन जो आपने गाना भी ऐसा हुआ तो आप वो पहले बताइए ना।
1: वो गाना था नाना करते प्यार हाय मैं कर गई।
0: ओके, यस यस यस, यही गाना है, मैं सुना दूं?
1: हाँ
0: ओके, एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

बिल्कुल आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव, इसलिए तो कहूंगा आई लव यू सो मच। और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा, तो अंतरे में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजिए 9135841232 पे।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। सबसे पहले मेरे पास मैसेज पहुंचा हुआ है हमारे सर्वजीत सेठी जी का, नंदलाल जी का, आरजे वंशिका जी का, और प्रीति राय दास जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, सुनीता गोप जी का, ज्योति खड़वड़ जी का, जाकिर खान जी का, बिरजू जी का, राजेश कुमार जी का, रूपचंद जी का, एम ताहिर जी का, सर्वेश भगत जी का, और यहाँ पे नाम है सुंदर पाल जी, विष्णु चंद्र जी, अनुराग जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है आपका भी, और नीतू शरण जी, विभूति भूषण जी, मतलब बहुत से दोस्त सीधे कॉल लगाते हैं सरोजी जी को। सर्वजीत सेठी जी, क्या बात है, डबल डबल डबल लग गया आपका नंबर बहुत जल्दी।
1: जी सर,
0: बहुत बहुत वेलकम है जी। तो आज जी लगा है कि पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, है ना। चलिए भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाए हैं आप?
1: मैं तेरे प्यार में पागल।
0: ओहो
1: जी सर,
0: सच में मैं तेरे प्यार में पागल, बहुत पागल हूँ, बहुत बड़ा। एंजॉय कीजिए इस गाने को, धन्यवाद।

और यहाँ से शुरू होता है अंतरा। अंतरा में शब्द से गाने लिख के भेजिए मुझे 9135841232 पे, यानी 91-35-84-12-32 पे। और इस बार बाजी मार चुकी है एक बार फिर से ज्योति खटवा।

0: इस बारे में सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है ज्योति खटवट जी का, सुनीता गोप जी का और यानी प्रीति राय दास जी का, आरजे वंशिका जी का, सुनील कुमार जी का, जाकिर खान जी का, दीपक गायकवाड़ जी का, सरोजीत शेट्टी जी का, सतीश शर्मा जी का, मिशा लंगा जी का, रूपचंद गोयल जी का, नंदलाल जी का, एम ताहिर जी का और सर्वेश भगा जी का, विष्णु चंद्र जी का, विभूति भूषण जी का, मतलब सभी का थैंक यू सो मच। और कॉल लगाते हैं सीधे एक बार फिर से ज्योति खटवट जी को। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है ज्योति खटवटे जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, और बताइए।
1: आ रही है।
0: और आपकी बातों से वो सहमत थी संगीता मुरुगर जी, कह रही है हाँ सही कह रही है। हाँ तो एक्चुअली अब क्या करूँ, मेरे पास भी समय तो नहीं है ना, है कि नहीं? नहीं तो उनके प्रोग्राम को मैं और पीछे कर देता, है कि नहीं? एक काम हो सकता है, 11 बजे के बजाय यानी कि 12 बजे से स्टार्ट करवा दूंगा और 2 बजे आरजे सोनी जी का करवा दूंगा।
1: ओके।
0: है कि नहीं? ये कुछ मतलब मैंने थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर हो सकता है। है ना? फिलहाल बताइए अगला कौन सा अंतरा के शब्दों से गाना चुनकर लाई है?
1: समाधि का जब तक रहे तन में जिया।
0: एंजॉय कीजिए। इसमें और भी दोस्तों की ये डिमांड आई थी लेकिन

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार, जो आपको दीवाना बना। सबसे पहले मेरे पास सुनील कुमार जी, उनके बाद नंदलाल यादव जी, ज्योति खटवड़ जी, सतीश शर्मा जी, अनिल कश्यप जी और आरजे वंशिका जी, दीपक कुमार गायकवाड़ जी, राजेश कुमार जी, गजानन सलोकार जी और रूपचंद गोयल जी, अशोक देशमुख जी, काजल झक्का जी एंड सुरिंदर पाल जी, बिरजू जी, सर्वजीत सेठ जी, मिसाल अंगा जी और धनेश जी। धनेश जी नाम है, मतलब यानी कि पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है, धनेश लिख के आ रहा है, तो धनेश जी का वेलकम करते हैं आपका भी। और ओके, और निशांत राय बोले जी हैं, और इन विष्णु चंद्र जी हैं, एम ताहिर जी हैं और विभूति भूषण जी हैं, मतलब बहुत से दोस्तों के। फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं। कहाँ गए हमारे सुनील कुमार जी? सुनील कुमार जी बहुत बहुत वेलकम है बांका बिहार वाले
1: जी। धन्यवाद सर, और नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या सर।
0: शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या, नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं सर, आप अपनी बताइए। थोड़ा सा है ना गुन, थोड़ा सा गाने के साथ कम गुनगुनाएंगे ना, तो आज थोड़ा सा आपको राहत मिल सकता है सिर के दर्द से।
0: वो तो ठीक है,
1: थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि उस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना सिर के ऊपर।
0: क्या है ना, मतलब आदत सी बन चुकी है, और अगर मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, मुझे प्रोग्राम करना बहुत से दोस्तों का डिमांड रहता है, इसीलिए।
1: जी जी, मैं इस बात से, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे भी हो, आपकी इच्छा है इसमें।
0: अरे कोई बात नहीं, है ना। और बताइए
1: जी, बहुत अच्छे हैं हम, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आप तो अभी तो काम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम, मेरे हिसाब से तो आप सही हैं।
0: बिल्कुल सही, आप सबका आशीर्वाद चाहिए।
1: जी जी जी जी, वो साथ है। हमारी दुआएं आपके साथ है।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज आप क्या सुनना, मतलब मेरे कहने का मतलब के अंतर के शब्दों से कौन सा गाना चुनकर लाए हैं आप?
1: एक वो गाना है हमारा खानदान का, मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देख
0: के। सच में उनकी सूरत बहुत प्यारी है, इसलिए
1: बहुत प्यारी, बहुत प्यारी,
0: तो गीत तो लिखना ही पड़ेगा ना, है ना, एंजॉय कीजिए।
1: जी जी जी जी।

और गीत के बोल है, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। अगर मैं ये कह दूं मोहब्बत है तुमसे, तो मुझको खुदारा गलत ना समझना कि मेरी जरूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम।

0: बिल्कुल, यानी प्यार की मूर्त अर्थात सुंदरता की मूर्त। वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, और सॉरी फीडबैक कह रहा हूँ यार, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहले आरजे वंशिका जी, ज्योति खटवड़े जी, आरजे आकांक्षा जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और बरजू जी, दीपक कुमार गायकवाड़ जी, राधा कृष्ण गोप जी और सुनीता गोप जी हैं, और सतीश शर्मा जी हैं, सर्वजीत सेठ जी हैं, गजानन सुरकार जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, एंड विभूति भूषण जी हैं, ताहिर जी हैं, निशांत राय बोले जी हैं, और आरजे सोनी जी हैं, धनेश मिश्रा जी हैं, दत्ता करम जी हैं, और हमारे इन विष्णु जी हैं, तो सभी का वेलकम करते हैं। सीधे कॉल लगाते हैं आरजे वंशिका जी।
1: मैं तो तुझ पे किताब
0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरजे वंशिका जी अंतरमस्ती में
2: जी।
0: और कैसी हैं आप?
2: कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास बोल रहे तो मजे में चकचक।
2: जी जी, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ।
0: ओके, अच्छी बात है
2: जी। आप बताएं, सर में दर्द है, आप ध्यान रखिए।
0: हाँ बिल्कुल, मैं ध्यान ही रख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना, इसलिए
2: जी।
0: रोबोटिक इंसान हूँ तो कोई बात नहीं है
2: जी।
0: जी बताइए, आज क्या अंतरा का सबसे गाना चुन के लाई है?
2: जी, धुरंधर मूवी का सॉन्ग है अरिजीत सिंह जी की आवाज में,

ओके एंजॉय कीजिए, गाना मैं प्ले कर रहा हूँ और आरजे कंचा जी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए ताकि आपके भी आवाज में गाना सुनने का मुझे मौका मिल गया। धन्यवाद।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतरा। अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लिखकर भेजे 9135 841232 पे, यानी 9135 84 12 32 पे।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए हॉटस्टार अंताक्षरी और खेलिए अंताक्षरी लाइव शो में। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। और इस बार मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है सुनीता गोप जी का और ज्योति खटवड़े जी का, दीपक जी का और आरजे सोनी जी का और प्रीति रायदास जी का और उनके बाद हमें सर्वजीत सेठी जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, सर्वजीत सेठी जी हैं, राधा कृष्ण गोप जी हैं और विष्णु चंद्र जी हैं, निशान रायबोले जी हैं, गजानन सरकार जी हैं एंड यहाँ पे आरजे वंशिका जी हैं और विभूति भूषण जी हैं, दत्तक कदम जी हैं। ओके, तो फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं हम सुनीता गोप जी को।

0: सुनीता गोप जी बहुत बहुत वेलकम है, कैसी हैं आप? हेलो,
1: आप कैसे हैं
0: जी? बहुत ही अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं।
1: हाँ सर, हम लोग भी अच्छे हैं।
0: ओके, तो आपके साथ साथ अनामिका जी भी खेल रही है ना, उनका भी वेलकम है। मुझे पता है, मैसेज से मैं समझ जाता हूँ कि किसने मैसेज किया, आपने किया है कि उन्होंने किया है। मैं मैसेज को देखता हूँ कि किसने मैसेज किया है क्योंकि आपके मैसेज करने का शायद कुछ अलग होता है, उनका अलग होता है।
1: जी सर, हम हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करती है
0: हिंदी और मतलब वो इंग्लिश की बात नहीं है, वहाँ पे कुछ वो लिखने का जो तरीका है ना आपका, उनका अलग है। हाँ
1: जी सर,
0: जी बिल्कुल। तो बताइए, अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन के लाई हैं आप लोग?
1: जा शाम होने आई,
0: मौसम ले ली अंगड़ाई। जी एंजॉय कीजिए इस गाने को। धन्यवाद
1: जी सर, धन्यवाद सर,
0: वेलकम।

और यहाँ से शुरू हो रहा है अंतर। तो इस अंतर में जो भी शब्द आपको सुनाई देंगे उनमें से जो भी गाना आपको याद आएगा फौरन मुझे लिख के भेजिए 9135841232 पे यानी 9185 84 12 32 पे अंतरा के शब्दों से गाने लिख कर भेजेंगे।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है सोनू गौतम जी का, एम ताहिर जी का, ज्योति जी का, सर्वजीत शेट्टी जी का, दीपक कुमार जी का, सर्वेश भागा जी का, गजानंद जी का, और सुनीता गोप जी का, आरजे आकांक्षा जी का, रवि महाड़े जी का, संतोष कुमार जी का, राधा कृष्ण गोप जी का, और इन विष्णु चंद्र जी का, विभूति भूषण जी का, निषाद लवण जी का। तो बहुत लोग का नेट डिस्टर्ब कर रहा है, क्या करें, लोग खेलना चाह रहे हैं लेकिन जल्दी मैसेज नहीं आ पा रहे। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि मैसेज आ जाए पहले, तो मैं जरूर आपका पहला नाम लूंगा। ओके कमान।
1: हेलो,
0: बहुत बहुत वेलकम करते हैं सोनू गौतम जी एक बार फिर से आपका अंतरा मस्ती में।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। तो बताइए अंतरा के शब्दों से कौन सा गाना चुन कर लाए हैं?
2: मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे।
0: मौसम की तरह बिल्कुल नहीं बदलने वाला, एंजॉय कीजिए
2: जी सर।

और यहाँ शुरू हो रहा है अंतरा। तो अंतरा में आए शब्दों से आप मुझे गाने लेकर भेजिए 9135841232 पे। और बता दूं कि जो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको स्पेशली कॉल लगाने के लिए। और दूसरी बात के यहाँ पे 8:30 बजे से स्टार्ट होगा इसका सेकंड राउंड, तो बिल्कुल तैयार रहेंगे प्लीज़।

0: लिखते हैं, ये क्या नाम है इनका, धनेश मिश्रा जी लिखते हैं दिल्ली से कि सर जी शो ये रुक रुक के चल रहा है। रुक रुक के तो नहीं चल रहा है, यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल सही है। हो सकता है कि आपकी तरफ नेटवर्क का डिस्टर्ब होगा, तो प्लीज एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए, शायद प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए।
1: प्यासी ही रही लेकिन नदी का मुंह नहीं देखा, तुम्हारे प्यार में कुछ इस तरह पागल हुई जानम, तुम्हारे प्यार में कुछ इस तरह पागल हुई जानम, तुम्हें देखा है जब से फिर किसी का मुंह नहीं देखा।

बेकरारी की हद से गुजर जाऊंगी, आग होगी जिधर मैं उधर जाऊंगी। मैंने तुमसे मोहब्बत का वादा किया, ये न सोचो कि दुनिया से डर जाऊंगी। बेवफाई का तूफान आने तो दो, बेवफाई का तूफान आने तो दो, पंखड़ी की तरह मैं बिखर जाऊंगी।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बनाने। मेरे पास जो सबसे पहले मैसेज पहुंचा है वो रविंदर कुमार जी का पहुंचा हुआ है, और रविंदर जी के साथ साथ हमारे सुनील कुमार जी हैं, सोनू गौतम जी हैं, गजानन जी हैं, दीपक गायकवाड़ जी, बरजू जी हैं, और ये खोखन विश्वास जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, एम ताहिर जी हैं, ज्योति खरबड़ जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, एंड राधाकृष्ण गोप जी हैं, निशांत राय बोले जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी हैं, रवि मोहड़े जी हैं, संतोष कुमार जी हैं, और यानी कि विष्णु जी हैं। तो कॉल लगाते हैं सीधे रविंदर जी को।

0: भाई रविंदर जी आपका बहुत बहुत वेलकम है अंतरा मस्ती में, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाई क्या बात है, एक ही बार आए
1: सर आपका? आप
0: जी जी हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो रविंदर जी, हेलो सर, आवाज आपकी नहीं।
1: नमस्कार, बताइए सर। सुन
0: आप थोड़ा सा नेटवर्क के लिए मैं आ जाए प्लीज। मैं ना अगर मैं चाहता तो आप सबको रेडियो हॉटस्टार के ऐप से कॉल करता, वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत से दोस्त अपडेट नहीं किए हैं। अगर आप सभी अपडेट कर लेते हैं एप्लीकेशन को तो बिल्कुल वहीं से मैं कॉल लगाता आप सबको, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने ऐप को अपडेट ज़रूर करें। रविंदर जी अगर आपकी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ हमसे थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में जाके बात करें प्लीज़। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी रविंदर जी।
1: हाँ सर आ रही है आपकी आवाज़।
0: आ रही है ना जी, अब आपकी भी आवाज़ आने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अंतरा मस्ती में, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: और आप कुछ कह रहे थे, अब कहिए, उस समय आपकी आवाज़ नहीं आई।
1: सर कह रहा यही मुझे दिल्ली कहा है दूसरे।
0: नहीं वो तो अभी आपने जो गाना भेजा वो मुझे बताइए। जो आपने गाना लिखकर भेजा है ना वो मुझे बताइए, कौन सा गाना लिखकर भेजा है? सबसे पहले आपने लिखकर भेजा था
1: उसका बोल मतलब
0: हाँ अगर आसमां तक। जी जी बिल्कुल जी सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, अब तक आप अंतरे के शब्दों से गाने के बोल लिखकर भेज रहे थे, लेकिन अब आपको अंतरे के बोल से गाने की पहचान करनी है और उस गाने के सही बोल लिखकर भेजने हैं, और साथ ही साथ जो गाना सुनना चाहते हैं उसके बोल भी अपने जवाब के साथ ही लिखकर भेजें इस मैजिकल व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9135 84 12 32। आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार अंतरा मस्ती शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे संडे स्पेशल में सुनिए हॉटस्टार अंताक्षरी और खेलिए अंताक्षरी लाइव शो में। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और सबसे पहले अब यहाँ पे यानी के आज का राउंड 2 स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक गाना की आज मैं डिमांड किया था आरजे कंसा जी के शो में, लेकिन वो मैं गाना पूरा नहीं सुन पाया था, इसीलिए उसी गाने से फिर मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ और इसी बीच में आपसे राउंड 2 का पहला सवाल करने वाला हूँ। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए और आते हैं फिर अब सवाल करने।

0: और ये रहा पहला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, हम तो तेरे कायल है, तेरी चाहत में घायल है, ना ऐसे हमको छोड़ के जा, मैं तो हूँ कुड़ी मटवाली, तेरे हाथ ना आने वाली, दीवाने दिल को जाके समझा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और एक जवाब और पहुंचा हुआ, यानी दो जवाब पहुंचे हुए हैं। मतलब जवाब बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन दो सही जवाब पहुंचे, बाकी सभी गलत गलत।

0: बिल्कुल मेरे पास यानी कि तीन जवाब अब यानी कि सही सही आ चुके हैं। सबसे पहले तो हमारे रवि मुहाड़े जी का, रविंदर कुमार जी का, ज्योति खटवड़े जी का और यहाँ पे सोनू गौतम जी का और मतलब इनका भी मतलब यानी कि इनका सही नहीं है, इनका गलत है, मतलब बाकी दोस्तों का यानी गलत है। मैं उन लोग का नाम नहीं ले रहा हूँ, सीधे कॉल लगाता हूँ रवि मुहाड़े जी को। बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि मुहाड़े जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा नंबर लग गया।
0: हाँ फाइनली नंबर लगे क्योंकि आपने गाने को पहचान लिया सबसे पहला।
1: एकदम मैंने अंतरे से तुरंत ही पहचान लिया बिल्कुल कि तेरे प्यार का रस जरा चखना है, मखना है, मखना में है ये अंतरा।
0: जी बिल्कुल सही जवाब है। और दो यानी मेरे पास फाइनली यानी तीन जवाब आए थे सही सही, एक तो आपका हुआ, एक तो यानी कि रविंदर जी का हुआ और एक ज्योति खटवड़े जी का हुआ। ये तीन जवाब मेरे पास आई, बाकी दोस्तों के जवाब गलत थे। सभी लोग कुछ कुछ भेजे हैं अपना अपना जो उन लोगों को यानी खेला गा।
1: जी जी
0: तो प्लीज अब बता दीजिए
2: सर। पहले तो
1: सर शनिवार अपनी बात हो पाती है कैसे भी एनकेन प्रकरण, थोड़ा बता दीजिए आपके स्वास्थ्य कैसा है, कैसे हो आप?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, एकदम झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में, चकाचक गारंटी के साथ मजे में।
1: चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आपकी पसंद से सुनवा दो, मैं यही लिख के भेज रहा हूँ सर अभी थोड़ी देर से।
0: मेरी पसंद सुनिएगा, मेरे सामने दिख रहा है, मेरे मन का मौसम बदलने लगा है, तेरे नाम से दिल धड़कने लगा है, सुनवा दूं?
1: मेरा भी धड़कने लगा है सर आपके नाम से दिल। चलो सुनवा दीजिए।

0: और यहाँ पे मैं अगला सवाल करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की, जले जो उसको और जलाओ, नाचो छम्मा छम छम्मा।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है किनका किनका किनका, ये हमारे सोनू गौतम जी हैं, और राहुल पासी जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, गजानंद जी हैं, सुनील कुमार जी हैं, ज्योति खरवड़े जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, नंदलाल यादव जी नहीं इनका गलत है, और निशांत राय बोले जी हैं इनका भी गलत है, और सर्वजीत शरी जी का सही है, और हमारे ये रवि महाड़े जी का भी सही है, और शैलेंद्र सर जी का भी सही है, विभूति भूषण जी का भी सही है। सीधे कॉल लगाते हैं सोनू गौतम जी को।

0: सोनू गौतम जी, फाइनली आज के विनर बनने के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। और आप विनर बन चुके हैं तो कुछ भी सुन सकते हैं, कोई भी सुन सकते हैं
1: जी, कोई सा भी सुन सकता हूँ, यह जो लिख के भेजा यही।
0: आप देखिए, चूंकि जो इन विनर बनते हैं उनको आखिरी मौका दिया था कि वो कोई भी सुन सकते हैं, लेकिन पहले जवाब बताइए क्या है।
1: तमा तमा लोगे तमा,
0: बिल्कुल सही जवाब है। और अब बताइए गाना कौन सा सुना है, ये भी सुन सकते हैं या कोई भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
1: नहीं, ये यही वाला सुना तो ये भी ठीक है गाना।
0: ओके ठीक है, तो ठीक है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू।

0: और ये रहा सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा।
2: चोरी चोरी चुपके चुपके मैं भी तुझ पे मरती थी, शाम सवेरे दिल भर जानी प्यार तुझी से करती थी। सच कहती हूँ ये मेरा दिल और किसी को चाहे ना, देखो देखो फंस गई मैं तो बुलबुल फेंका यूं जाल।
3: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

बिल्कुल मेरा दिल जिस दिल में फिदा। वैसे मेरे पास बहुत सारे फिर मतलब मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहले आरजे आकांक्षा जी, ओके, उनके बाद हमारे नंदलाल यादव जी, वेलकम है, बागेश्वर जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं, और ये विष्णु जी हैं, और ये ज्योति खटवड़ जी हैं, और क्या नाम है, राहुल पासी जी हैं, खोकन विश्वास जी हैं, संगीता अंबुलकर जी हैं, सर्वजीत शेट्टी जी हैं, और क्या नाम है इनका, गोपाल परिदार जी, अच्छा गोपाल परिदार जी हैं, और रवि भाड़े जी हैं, और विभूति भूषण जी हैं, बर्दू जी हैं, जितेंद्र जी हैं, सीधे कॉल लगाते हैं आरजी कंसा जी को।

0: क्या हुआ? नहीं जा रहा है कॉल, नो प्रॉब्लम, फिलहाल कॉल लगाते हैं नंदलाल जी को। नंदलाल यादव जी, बहुत बहुत बधाई हो चुकी है, आरजे आकांक्षा जी का कॉल नहीं लगा तो आपको कॉल लगा दिया।
1: नमस्ते। नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बहुत ठीक है सर जी, कोई बात
0: और
1: नहीं।
0: हाँ,
1: आनंद ले रहा।
0: आप चूंकि यानी कि सेकंड नंबर पर थे तो मैंने आपको कॉल लगा दिया। जी तो बता दीजिए आज जवाब पहले।
1: ओ गाना है अखियों से गोली मारे।
0: जी और आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: एक गाना सुना दीजिए, आज हमने दिल का हर किस्सा तमाम कर लिया, सर मूवी से।
0: आज हमने दिल का आपको सर फिल्म का गाना बहुत अच्छा लगता है ना? चलिए एंजॉय कीजिए।
1: धन्यवाद
0: जी।
1: धन्यवाद।

0: ओके, तो यह रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, मैं तेरा जी भर दूं, सोचा था हाँ कर दूं, फिर काहे ना कर दी, मैं सबकी जान कर दूं, मैंने बदल दिया इरादा। दोस्तों, आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और नाविया जी, अभी अभी आपका मैंने मैसेज देखा है, आई एम सॉरी, चूंकि मैं आज यानी व्हाट्सएप के मैसेज को देख रहा हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे मैसेज ध्यान नहीं दे पाया है। और ये लिखती हैं कि मेरा वहाँ पे चैट में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, क्यों, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है मुझे जरूर बताएं। लॉगिन जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन जैसे आपने मैसेज के लिए किया है, वही आईडी पासवर्ड के लिए वहाँ पे यानी कि चैट में भी आपका वही लॉगिन पासवर्ड डालिए, जो आपका फोन नंबर है फोन नंबर डालिए और जो आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डालिए, खुल जाएगा। अगर नहीं खुलेगा तो फिर आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपके पासवर्ड को रीसेट करके फिर आपको दूंगा, फिर अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा और फिर दोबारा आपका लॉगिन होने लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल। और बहुत से दोस्त हमारे इधर भी जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन में, मैं वहाँ पे अभी मेरा ध्यान नहीं है क्योंकि मेरा सारा ध्यान व्हाट्सएप पे टिका हुआ है लोगों के मैसेज पर। फिलहाल मेरे पास सबसे पहला मैसेज किन का पहुँचा हुआ है, ये सही जवाब तो हमें सुनील कुमार जी हैं, और सुनील कुमार जी के साथ साथ किन का है, आरजे आकांक्षा जी का है और रवि मुखर्जी, यानी कि तीन दोस्तों का बिल्कुल जवाब सही है, बाकी दोस्तों का जवाब बिल्कुल गलत है। तो सुनील कुमार जी कॉल लगाते हैं।

0: बहुत बहुत बधाई हो सुनील कुमार जी, आप इसमें शामिल हो गए जिसमें सिर्फ तीन दोस्तों ने जवाब दिया, एक आप फर्स्ट हुए, सेकंड आकांक्षा जी और थर्ड रवि मोहड़े जी। बोलिए। हेलो
1: हेलो
0: जी, तो जवाब बता दीजिए।
1: आवाज आ रही है आपको?
0: बिल्कुल आ रही है
1: आवाज। जुम्मा चुम्मा चुम्मा दे दे।
0: बिल्कुल जुम्मा चुम्मा दे दे गाना है।
1: गाना
0: जी बिल्कुल। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: सेम यही गाना सुनवा दीजिए सर।
0: ओके सुना रहा हूँ, इंजॉय कीजिए जुम्मा चुम्मा। ओके
1: जी।
0: और ठीक है ना? ओ गलत गाना मैंने प्ले कर दिया, कोई बात नहीं है, दूसरा पर प्ले करता हूँ। जुम्मा चुम्मा, हाँ इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल, और ये रहा सवाल,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। अंदर कितनी गर्मी है, बाहर कितनी सर्दी है, तूने बेदर्दी मेरी हालत कैसी कर दी है, दिल में बसा ले अपना बना ले, यूं ना बढ़ा मेरी उलझन।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने की बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा है रुबीना नाथ जी का, नंदलाल जी का, गोपाल परिदार जी का, दीपक जी का, संगीता मुल्का जी का, ज्योति खरवर जी का और विष्णु जी अच्छा ओके। और यहाँ पे ये संजय सहनी जी हैं, जितेंद्र गोस्वामी जी हैं और पूजा भास्कर जी हैं, राहुल शुभ जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, राजीव तिवारी जी हैं, विभूति भूषण जी हैं। तो सभी का जवाब सही है, सीधे कॉल लगाते हैं हम रुबीना नाथ जी को।

0: जी बहुत बहुत वेलकम है आपका रुबीना ना जी।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम। और कैसी हैं आप?
1: कैसे हैं आप?
0: मैं तो बहुत अच्छा
1: जी।
0: मेरा एकदम झकास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक।
1: अच्छी बात है
0: जी। तो जवाब बता दीजिए।
1: जवाब है तू मेरा हीरो नंबर वन।
0: बिल्कुल सही जवाब है। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: सुना दीजिए आप हमें। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है।
0: अच्छा
1: छोटी छोटी जी सुना दीजिए।
0: ओके जरूर सुना देंगे हम आपको।
1: ऐसे हम प्रोग्राम तो सुन से ही सुन रहे हैं लेकिन पार्टिसिपेट करने में थोड़ी देरी हो गई।
0: कोई बात नहीं, आप इस गाने को गुनगुना भी सकती थी, गाती अच्छा है आप।
1: अच्छा ओके एक लाइन गा देती हूँ।
0: ओके

0: होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है,
1: हाय क्या बात
0: जब
1: है।
0: किसी को किसी से प्यार होता है, पंछी बन के उड़ता है ये दिल, मिलती है जब सपनों की मंजिल, सपने तो फिर सपने होते हैं, सच है ये कब अपने होते हैं, जाग पिया की देखा करो सपना, जब कोई दिल को लगता है अपना।

0: सवाल करना मैं भूल गया था, कोई बात नहीं अभी कर लेता हूँ। ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, ढोल जानी मेरे पास आ तेरी मेहरबानी, झूठ बोलना नियत में है तेरी बेईमानी, ओ कुर्ती तेरी छींटड़ी दुपट्टा तेरा लहरिया, हिंदुस्तानी रानी बन जा राजा की तू गोरिया, मैं कुड़ी पंजाब दी मेरा रेशम दा रुमाल वे, जिंदगी भर भूलेगा ना कर दूंगी वो हाल वे।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या

किसी से प्यार होता है। मेरे पास सबसे पहला भी मैसेज किनका है हुआ है, जरा देख लेता हूँ मैं। और इस बार दीपक कुमार गायकवाड़ जी का मैसेज मेरे पास पहुंचा हुआ है, और उनके पास है ये जीनत सिद्दीकी जी, बहुत बहुत वेलकम है इनका भी है। और रुबीना नाथ जी हैं, गजानंद जी हैं, ज्योति खरवड़ जी हैं, नंदलाल जी हैं, और हमारे ये रवि मोहर जी और पूजा भास्कर जी हैं, और साथ ही साथ हमारे ये रविंदर जी हैं, और संगीता अम्बुलकर जी हैं, और हमारे ये राजीव तिवारी जी हैं, और गोपाल इन पड़ेदार जी हैं, और विष्णु जी हैं जो कॉल लगाते हैं।

0: दीपक कुमार गायकवाड जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है। कैसे हैं
1: जी? सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपको और आपके सभी सुनने वालों का मैं स्वागत करता हूँ रेडियो हॉट स्टार पर। नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत देर से ट्राई करें और फाइनली आपको सफलता मिल ही गई। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, है ना?
1: बहुत देर से कोशिश, वो क्या सर, जैसे मैं आंसर लिखता था कुछ ना कुछ मेरे तो जैसे किराना दुकान है तो कोई ना कोई ग्राहक आ जाता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो वो उसको सामान, किराना सामान देने में लग जाता था, फिर वो लेट हो जाता था।
0: ओके, तो फिलहाल बताइए
1: सर।
0: हाँ बोलिए बोलिए।
1: आंसर बता दूं पहले?
0: इनसे बता दीजिए पहले।
1: नहीं हो नहीं हो दिल तेरा मेरा नहीं लगता, सकत के गाना है वो।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तेरा रंग बल्ले बल्ले सकत के।
0: हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे बता दीजिए
1: सर। वो गाना एक गरम चाय की प्याली हो।
0: एक गरम चाय, देखता हूँ। एक गरम चाय की प्याली।
1: सोमवार से मतलब मंडे टू फ्राइडे तो हम बड़ा कार्यक्रम आपका बड़ा ही आराम से सुनते हैं, बहुत मस्त शांति से कार्यक्रम सुनते हैं। और फिर आपका ये जो कॉम्पिटिशन चालू हो जाता है ना, तो हमारा दिमाग हमारा भी सर दुखने लगता है। तो हमारा टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाता है।
0: अच्छा।
1: गर्मी लगने लगती है। और जैसे आपने शुरू में बताया कि मेरा हाथ दर्द है, तो मैं बोलने वाला था कि अब हमारा भी होने वाला है।
0: कोई बात नहीं, फिलहाल एंजॉय कीजिए।
1: जल्दी जवाब देना पड़ता है ना सर, तो उसके लिए क्या है कि सब भूख प्यास सब गायब हो जाती है।
0: जी समझ सकते हैं। और ये सब आप लोग का प्यार है ना? आप लोग इतना यदि चाव से मतलब इतना ज्यादा लोग ये जवाब देते हैं, सुनते हैं, अच्छा लगता है कि नहीं?
1: और आपका प्रोग्राम में जो है ना 6 से 10 के बीच आता है, तो वो सर मैंने पहले बता दे, खाना हमारा 10 मिनट में होता तो हमको 2 मिनट में खाना पड़ता है।
0: अच्छा ऐसा है,
1: फटाफट खाना पड़ता है। आज कुछ बनना है तो मेरे को थोड़ा ही खाऊंगा, ज्यादा नहीं खाऊंगा।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए गाना प्ले कर दिए, एंजॉय कीजिए, है ना?
1: हाँ तो सर सुना दीजिए सर। धन्यवाद सर, शुक्रिया।

0: हर हम, और यानी सीने से लगने के बाद बहुत ही सुकून शांति मिलती है ना, कितना प्यारा लगता होगा ना। वो मुझे गाना याद आ रहा है कि तूने लगाया गले से मुझको तो प्यार आया, वाह। फिलहाल मैं सवाल करता हूँ यहाँ पे,
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, चिकने चिकने बदन से तेरे सर सर चुनरी सर के, ऐसा लगे कि बिन बादल अंबर में बिजली कड़के, जी करता है ये बिजली मैं तुझ पे आज गिराऊं, तुझको भर लूं बाहों में ये चुनरी तुझे उड़ाऊं, अच्छा। बढ़ता ही जाए दर्द होना खत्म।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल।

और इस बार मेरे पास सबसे पहला जवाब पहुंचा हुआ है जीनत सिद्दीकी जी का, आरजे सोनी जी का, ओके जी, रुबीना नाथ जी का, अजय कुछ जी का, और सुनील कुमार जी का, और विष्णु चंद्र जी का, और संगीता अम्बुलकर जी का, और राहुल शुभ जी का, और जितेंद्र जी का, गोपाल परिदार जी का, और गजानंद जी का। इतने दोस्तों का सही जवाब है, बाकी दोस्तों का जवाब गलत गलत है, उनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सॉरी। फिलहाल कॉल लगाता हूँ जीना जी को।

0: जीनत जी आपका बहुत बहुत वेलकम है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका प्रोग्राम से जुड़ी अच्छा लग रहा काफी मुझे।
0: ओके थैंक यू सो मच, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका जीनत जी। तो जवाब बता दीजिए पहले, और कहाँ से हैं आप?
1: मैं उत्तर प्रदेश चंडीगढ़ से।
0: अच्छा जी, उत्तर प्रदेश
1: डिस्ट्रिक्ट हरदोई।
0: ओके ठीक है, अब बता दीजिए जवाब।
1: राजाना छुड़े मेरी चिंदरी सनम।
0: बिल्कुल सही जाना आपका जवाब है। और आप क्या सुनना पसंद करेंगे ये भी बता दीजिए।
1: जी मुझे सॉन्ग सुनना है, यही वाला चला दीजिए आप, राजाना छुड़े मेरी चिंदरी सनम।
0: ओके चुनरी चुनरी वाला ही।
1: जी सर।
0: ओके चुनरी चुनरी कहाँ गया जी चुनरी चुनरी। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, रुकिए, अब मैं मतलब डाउनलोड करना पड़ेगा।
1: या फिर आप कोई दूसरा सुना दीजिए, हम दूसरा बता सकते हैं। हाँ, हाँ। जी सर, मुझे धुरंधर मूवी का बेस गहराइयां सुना दीजिए।
0: तो गहरा हुआ तो प्ले हो चुका है फिलहाल, मैं आपको यही।
1: अच्छा हो चुका नहीं फिर, ठीक है दूसरा।
0: बोलिए बोलिए बोलिए।
1: दिल तो दिल ही दिल पागल नंटी कसम।
0: अभी आपका ये वाला गाना डाउनलोड हो चुका है, आ जाना छूले मेरी चुनरी।
1: ठीक है ठीक है,
0: तो मैं इसको सुनवा दूं?
1: जी सर सुनवा दीजिए।
0: ओके एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। रहता हूँ यादों की रंगरलियों में, मेरे सपनों का घर है महबूबा की गलियों में। दीदार जो हो परियों का मैं बेकाबू हो जाऊं, रंगीन लगी ये दुनिया मैं ख्वाबों में खो जाऊं। मांगू हसीनों से निशानियां, बहके शबाबों की रवानियां, हुस्न का जलवा मेरी इन आंखों का पर्दा खोले।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है इस बार ज्योति खटवटे जी का, और उनके बाद है हमारे संजय साहनी जी हैं, सुनील कुमार जी हैं बांका बिहार वाले, और इन पूजा भास्कर जी हैं, गजानंद जी हैं, और गोपाल इन पड़ीदार जी हैं, राहुल इन पासी जी हैं। मतलब बहुत से दोस्तों का जवाब गलत है, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सीधे कॉल लगाता हूँ। ज्योति जी बहुत बहुत आपको बधाई हो आज के विनर बनने के लिए।
1: थैंक यू।
0: और हाँ, फिलहाल तो अब विनर बन चुकी है, आप कुछ भी सुन सकते हैं, कोई भी गाना सुन सकती हैं। अच्छा ठीक है, वही सुनाऊंगा। और जवाब क्या है?
1: जब भी कोई लड़की देखूं
0: मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, है ना? एंजॉय कीजिए, गाना प्ले कर दिया आपका।

0: और ये रहा अगला सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, करके इशारा बुलाए जवानी, ऐसे लुभाना मुझे दीवानी, तेरे बिना है अधूरी कहानी, दूंगा तुझे मैं कोई निशानी, आजा आजाओ ना दिलबर जानी, जानी जाना ओ जाना, तू है ख्वाबों की रानी, अपना बनाऊंगी निगाहें तो मिला।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना।

0: ओके माय गॉड, बहुत बहुत वेलकम है आपका आरजे सोनी जी। हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल, बहुत बहुत वेलकम है आरजे सोनी जी। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है।
1: कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अभी बढ़िया है। तो आप तो उधर बारिश हो रही है कि नहीं बताइए?
0: मेरे तरफ तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। बारिश मतलब है अभी खुल चुकी है फिलहाल।
1: अच्छा, अभी घंटा हमारे यहाँ तो अभी काफी मतलब बारिश हो रही है।
0: इधर एक घंटा पहले हो रही थी बारिश, लेकिन अभी नहीं हो पा रही है बिल्कुल एकदम। अभी मौसम साफ है,
1: चलिए बढ़िया है।
0: तो बताइए जवाब पहले
1: गाने का।
0: जो आप
1: सुने है सुहाना।
0: बिल्कुल, और आप क्या सुनना चाहती हैं ये भी बता दीजिए।
1: पवन सिंह की आवाज में और पलक उछल की आवाज में गाना है नैया के फुलवा शायद।
0: नैया के फुलवा, अच्छा हाँ ओके। जी मुझे मिल गया गाना, उम्मीद कर मैं सुनवा रहा हूँ इस गाने को। एक मिनट, डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, जस्ट ए मिनट। हो गया, चलिए एंजॉय कीजिए, गाने सुनवा रहा हूँ।

0: और ये रहा सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। मेरी राम कली, मैं तुझ पे दिलो जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे भाई से डरता हूँ। छोड़ो भी यूं डरना, आ जाओ पास में, मर जाए ना यूं ही मिलने की प्यास में।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं। सबसे पहले एक बार फिर से जीनत सिद्दीकी जी का और राहुल यानी के पासी जी का, ज्योति खटवड़े जी का, दीपक गायकवाड़ जी का और हमारे ये गजानन सरोकार जी का और विष्णु जी का, अजय कुछ जी का और संजय सानी जी का, मतलब बहुत से दोस्तों का गलत भी जवाब है, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। सीधे कॉल लगाता हूँ जीनत सिद्दीकी जी को।

0: आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है जीनत जी। आप तो बहुत फास्ट है जी, दो बार आपने ट्राई किया और दोनों बार आपका सबसे पहला नंबर लगे, क्या बात।
1: जी अभी तो हमने सुना स्टार्ट किया था बस।
0: अच्छा, फिलहाल ये हाल है, दो बार आपने ट्राई किया और दोनों बार आपका लग गया, वाह वाह वाह, क्या बात।
1: जी सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, मतलब जानकारी है गाने की, है ना, फौरन पहचान ले रही है।
1: थोड़े बहुत है सर।
0: चलिए अच्छी बात है, तो इस बार जवाब बता दीजिए क्या है इसका जवाब।
1: किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाएं।
0: ऐसा लग रहा है कि आप गाती भी हैं, थोड़ा गाइए ना।
1: सर ज्यादा नहीं गाते हैं।
0: ओके, जितना भी हो सकता है गा सकती है, नो प्रॉब्लम।
1: सर हम दूसरा गाएं, ये वाला सॉन्ग नहीं।
0: अच्छा ओके, हाँ कोई और गाना आप सुना दीजिए, लेकिन आपको सुनना क्या है, आप वही सुना दीजिए।
1: जी मुझे सुनना गाना है, खुशी मूवी का सॉन्ग है, हाय रे हाय रे हाय रे, ये वाला सॉन्ग।
0: हाय रे हाय रे हाय रे। अच्छा ठीक है
1: जी सर।
0: और आप अभी क्या सुनाने वाली थी, जरा सुनाइएगा।
1: मेरा गाने का मन नहीं, फिर भी हम थोड़ा सा गाएंगे।
0: ओके ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू।
1: मेरा गला थोड़ा सा खराब है। नैनों की तो बात, नैना जाए नहीं।

0: हम तो बस इतना जाने हैं,
1: क्या बात है,
0: तू मेरा है सनम, तू मेरा हम सब,

0: फिलहाल ये सवाल।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा, रेशम का लहंगा मेरा, रेशम का लहंगा, लहंगा है महंगा मेरा, लहंगा है महंगा, लहंगा उठा के चलूं, घूंघट गिरा के चलूं,
0: अच्छा
1: क्या क्या बचा के चलूं, राम जी राम जी।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दी दीवाना, बजाते रहो दिल।

और फाइनली एक बार फिर से आर्जे आकांक्षा जी का नंबर आ ही गया है। आर्जे आकांक्षा जी एक नंबर, सोनी जी दो नंबर में चल रही है। ओह माय गॉड, क्या बात है। और हमारे साथ साथ है अजय यानी चिक्कू जी और संजय साहनी जी हैं, और राहुल यानी शुभ जी हैं, और ज्योति खड़वाड़े जी हैं, और इन विष्णु जी हैं, और रवि महाड़े जी हैं, और दीपक जी हैं, और पूजा भास्कर जी हैं, गजानन जी, मतलब सभी के जवाब बिल्कुल सही सही सही सही सही सही आए हुए हैं। एक साहब और भी हैं, क्या नाम है इनका, नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा है। नंबर है 960808, तो प्लीज अपना नाम बता दीजिएगा क्या है। फिलहाल कॉल लगाते हैं हम आर्जे आकांक्षा।

0: चले जा रहे हैं।
1: कॉल लगाते हैं। आरजे आकांक्षा जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है। वेलकम है, कैसी हैं आप?
2: बस ठीक ठाक।
1: ठीक और ठाक,

0: कुछ हुआ है लग रहा है।
1: ठोक ठाक के कुछ ठीक ठाक हुआ है।
0: अच्छा, ठोक ठाक के ठीक ठाक हुआ है, चलिए अच्छी बात है। फिलहाल ठीक हो गया है ना? ठीक होना चाहिए।
1: नहीं।
0: अच्छा, ठीक नहीं हुआ है?
1: बिल्कुल ठीक नहीं, एकदम बर्बाद।
0: ओ माय गॉड, लग रहा है कुछ बहुत कुछ।
1: खैर उधर मत जाइए, वापस आइए रहने दीजिए।
0: चलिए मैं वापस आ गया हूँ। और बताइए, पहले मतलब मैं यानी कि बहुत देर से इंतजार करता था कि कम से कम आप भी पार्टिसिपेट करें और आपसे बात करने का मौका मिले, और अभी जाकर मौका मिल रहा है मुझे। कैसी हैं आप?
1: बताया तो ठीक ठाक।
0: हाँ ठीक ठाक ही है। ये ठीक ठाक से मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और यानी कहिएगा तब समझ में आएगा।
1: जो सच होता है वही कहते हैं, झूठ बोलने की आदत।
0: झूठ थोड़े कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। फिलहाल
1: तो कुछ और नहीं बता।
0: जवाब बता दीजिए पहले।
1: जवाब वो तो आप बताएंगे।
0: वो मैं कैसे बताऊंगा? आप
1: जो सवाल है ना, वो जो जवाब है वही सवाल है।
0: मतलब
1: चोली के पीछे क्या है बताइए।
0: हाँ, ये गाने का बोल है। बिल्कुल
1: आप बताई नहीं, ये तो गाने का बोल है। आप सवाल का जवाब दीजिए, चोली के पीछे क्या है?
0: वो तो दिल है ता है ना।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: पक्का चेक हाँ, करवा लीजिए किसी
0: हाँ, से। दिल ही होता है ना, यानी कि वो गाने में मतलब बोलती है ना कि दिल है।
1: हाँ। बिल्कुल गलत है। खैर चोरी के जाने दीजिए।
0: फिलहाल तो आप बता दीजिए।
1: बहुत सुंदर ऐसे आज नहीं बता सकते हैं।
0: अच्छा।
1: ना बता देते। सुनिए, हाँ। चांद बहुत प्यारा निकला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, अगर कोई अपने छत पे हो तो पूरा दीदार कर सकता है।
0: अच्छा, खैर मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं अभी नहीं देख सकता।
1: आज बाहर निकलेगा, देखते जाइएगा, इसलिए बोला है।
0: ओके, फिलहाल
1: बेहद खूबसूरत है।
0: ओके, अच्छी बात है। तो ये बताइए, आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: सैड सॉन्ग।
0: हाँ, सैड सॉन्ग से मुझे एक ही गाना याद आता है और मैं चाहूंगा कि आप उसे गुनगुनाएं।
1: कौन सा?
0: फेरो ना नजर से नजरिया। ये गाना मुझे बेहद पसंद
1: ये...
0: है।
1: चलिए हम गुनगुना देते हैं आप जा रहे तो।
0: हाँ?
1: लेकिन हमें सुनना है।
0: अच्छा।
1: दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानू।
0: ओहो,
1: आगे नहीं जा सकते।
0: ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल आप इस गाने को थोड़ा सा गा दीजिए प्लीज।

0: बढ़िया। सॉरी मैं नहीं गा पाऊंगी, आई एम सो सॉरी।
1: कोई बात नहीं, और मुझे मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आप रो रही हैं। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानो।

0: फिलहाल आज का आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ, ये रहा आखिरी सवाल। ओ माय गॉड, फिलहाल हैंग हो गया है। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए। ओके, मैं यहाँ से कर सकता हूँ।
1: ये रहा किसी गाने का अंतरा। बोल जरा तू जाने महबूबी, मुझ में ऐसी क्या है खूबी। तू एक रेशम की डोर डोर, तेरी चाल पे आशिक मोर मोर। तेरी जुल्फ घनी चिट चोर चोर, घनघोर घटा बदमस्त मस्त।
2: दोस्तों आपने सुना अंतरा, अब इसके गाने के बोल हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे। अपने जवाब के साथ गाने की रिक्वेस्ट जो आप सुनना चाहते हैं। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दी दीवाना। बजाते रहो दिल से।

तो दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और दिल क्या ही बताऊं, मेरे पास अभी कुछ मैं बोल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि दिल जब टूटता है ना तो आवाज नहीं आती है। लेकिन क्या कहें, फिलहाल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए। सबसे पहला मैसेज है हमारे क्या नाम है, यानी कि संजय साहनी जी। ओ माय गॉड, संजय साहनी जी। इनके बाद है जीनत सिद्दीकी जी, आरजे सोनी जी, दीपक जी, ज्योति जी एंड यानी विष्णु जी, राहुल जी, अजय कुछ जी, रविंदर, ये क्या नाम है, मतलब रवि महाड़े जी और काजल झक्का जी, एमडी फैज जी, गजानन जी, गोपाल जी और एक साहब और भी है, उनका नाम मुझे पता नहीं चला है। अच्छा, यानी उदय प्रताप सिंह जी। ओके ओके, उदय प्रताप जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। फिलहाल सीधे कॉल लगाते हैं संजय साहनी जी को।

0: कॉल लगा था संजय जी को। संजय साहनी जी, इसे कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, लगातार कोशिश में है। फाइनली नंबर लग ही गया।
1: नमस्कार।
0: कैसे हैं?
1: ये प्रयास अच्छे हैं सर, उतने अच्छे नहीं है, थोड़ा सा फीवर से ज्यादा वीकनेस था, इसीलिए बहुत सारे गाने में भाग भी नहीं ले पा रहा था।
0: और जब ले रहे थे तो बस एक दो नंबर से पीछे जा रहे थे, मतलब।
1: जी,
0: वही मैं कह रहा हूँ। तो बताइए आज। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो पहले जवाब बता दीजिए उसका।
1: ये है सर, ये कुछ चीज बड़ी है, मस्त,
0: बिल्कुल चीज बड़ी है, मस्त मस्त, जितनी तारीफ करें कम ही होगी, है कि नहीं? फिलहाल क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: ये बार बार मैं भेज रहा था सर, उसमें वो मिलने की तुम कोशिश करना वादा कभी ना करना।
0: अच्छा, मिलने की तुम कोशिश करना। अच्छा जी, बिल्कुल सुनवाते हैं इस गाने को, एंजॉय कीजिए।

दौर में आज जिन जिन दोस्तों को फोन करने वाला हूँ उनमें से कुछ नाम मैंने नोट किया हुआ है। एक है ये निकित की विष्णु चंद्र जी, गोपाल इन परिदार जी और गजानंद सलोकार जी, राहुल पासी जी, सर्वेश भगत जी, संगीता अम्बुलकर जी और ये विभूति भूषण जी और ये नाम है मतलब बिरजू जी और एम ताहिर जी। अगर सभी लोग सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करें।

0: बिल्कुल कॉल लगाते हैं सबसे पहले।
1: शीशा तो टूट जाता है, शीशा तो।
0: संगीता अम्बुलकर जी बहुत बहुत बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है स्पेशल कॉल में। कैसी हैं आप?
2: थैंक यू सर, आज मैं ठीक हूँ
0: जी। आज आपने ट्राई किया लेकिन बहुत
2: किया।
0: हाँ, लगातार
2: हमारा लक साथ नहीं दे रहा।
0: आज आपका लक साथ नहीं दे जी बिल्कुल, क्योंकि अब मैसेज आपसे पहले लोगों का आ रहे हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, है कि नहीं?
2: हाँ।
0: उसमें मेरी गलती नहीं,
2: स्पीड से करते हम लोग टाइप, फिर भी फटाफट करते फिर भी नहीं पहुँच पाते।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। फिलहाल आप बताइए, आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगे स्पेशल कॉल में?
2: मुझे सुनना है तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई।
0: वाह वाह वाह, क्या गाना है, तुम जो आए जिंदगी में। बहुत प्यारा, हाँ। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। एंजॉय कीजिए, सुनवाते हैं।
2: थैंक यू।

मेरे पास मैसेज आ चुका है हमारे यानी कि गजानन जी का, राहुल पासी जी का और विष्णु जी का आ चुका है, और भी दोस्तों का नाम मैंने लिया था, जैसे गोपाल पड़दार जी हैं और सर्वेश भगत जी हैं और ये विभूति भूषण जी हैं और बर्जू जी हैं, ताहिर जी हैं। प्लीज सुन रहे हैं तो मैसेज जरूर करें।

0: जी विष्णु जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं?
1: ठीक है जी, नमस्कार।
0: राधे राधे। नमस्कार राधे राधे
1: जी,
0: बताइए स्पेशल कॉल में आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जुदाई जुदाई
0: जुदाई जुदाई भाई, काहे के लिए जुदाई?
1: यही आज अच्छा लगेगा।
0: अच्छा, ओके जी, तो सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, नो प्रॉब्लम है कि नहीं? तो आज लग रहा है कि किसी से आपकी जुदाई हुई है ना?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। पर समय का होता है, टाइम ऐसा होता है कि कब क्या हम बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, वो समय का ही पे निर्भर करता है।
0: हाँ, चूंकि समय सबसे बलवान होता है ना
1: जी।
0: कोई बात नहीं, सुनाएंगे आपके पसंद का गाना, एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।
1: ठीक है।

मैं अगला कॉल लगाऊंगा सर्वेश भगत जी को, उनके बाद यानी कि विभूति भूषण जी को, उनके बाद देखता हूँ।

0: अगला कॉल लगाते हैं सरोज भगत जी को।
1: सजना तेरे बिना।
0: जी सरोज भगत जी, बहुत बहुत वेलकम है स्पेशल कॉल में, और आपका नंबर तो स्पेशल कॉल में आता है हमेशा। क्या बात
2: जी।
0: जी, और आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: जी थैंक यू सर। ओके, तो इतना प्यार देने के लिए।
0: और आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: ये दिल लगी फिल्म है।
0: ओके।
2: मैं दीवाना हूँ। अच्छा। मुझको दिल लगी ने मारा है।
0: ओके ओके, मैं सुनवा दिया।

0: अगला कॉल लगा देता हूँ विभूति भूषण शरण जी को।
1: किसी के प्यार में मरने की बात करते हो।
0: विभूति भूषण शरण जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका स्पेशल कॉल में।
2: धन्यवाद सर।
0: तो बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
2: सुनना तो था मुझे दिल दिल दिल दिल, लेकिन पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग के कॉलेज के समय का एक गाना था, वो शायद एल्बम था, एल्बम का था कि किसी एल्बम का था, लेकिन शायद ना मिल पाए।
0: दिल दिल दिल
2: जा करके बताते हैं। दिल

0: हवाओं सुनो घटाओ सुनो, मेरे साथ भी प्यारे का हादसा हो गया। दिल दिल दिल दिल दिल दिल दिल मेरा दिल खो गया।
1: अच्छा,
0: उस समय का गाना था।
1: अब फिल्म का नाम बता सकते हैं?
0: नहीं, वही फिल्म का नाम ही तो नहीं याद आ रहा है, इसलिए हमने उसको छोड़ करके दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, हमने रिक्वेस्ट भेजा है आपको।
1: मैं तो वो प्ले कर, अच्छा एक काम करता हूँ, शायद मैं ढूंढ रहा हूँ, अमित कुमार की आवाज में है।
0: हाँ, अमित कुमार की आवाज में।
1: तो फिल्म का नाम है शायद, यानी कि तुम पर हम यानी कुर्बान, शायद
0: तुम पर हम कुर्बान। हाँ हाँ, हो सकता है, मतलब याद नहीं था गाना फिल्म का है।
1: मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ये मैंने इत्तेफाक से अगर ये गाना हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं आपका दिल का जरूर मैं प्ले कर दूंगा, कोई बात नहीं है, है ना। लेकिन आपने गाया अच्छा है, फिलहाल देखते हैं।
0: ठीक है सर, ओके, थैंक यू।

0: जी मुझे प्यार हो गया है और ये गाना मैं पहली बार सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे यानी कि प्लेलिस्ट की शोभा बढ़ा दी, मतलब एक गाना और ऐड हो गया, इतना प्यारा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और फीडबैक भी आया हुआ है मेरे पास, लेकिन मैं फीडबैक शामिल नहीं कर पाऊंगा समय के अभाव में। सीधे कॉल लगाता हूँ राहुल पासी जी को, फिर इसके बाद यानी कि गजानंद जी को कॉल लगाऊंगा। बहुत बहुत वेलकम है राहुल, राहुल पासी जी कैसे हैं?
1: ठीक है, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मेरे को अदनान सामी का गाना सुना देना जी, इश्क होता नहीं है सभी के लिए, जोगर स्पार्क फिल्म का।
0: एक मिनट, इश्क
1: होता नहीं है सभी के लिए, सभी के लिए।
0: ओके जी, गाना तो मुझे मिल चुका है आपका।
1: हाँ जी
0: जी, ओके सुनवाता हूँ, इंजॉय कीजिए। धन्यवाद।
1: ठीक है, धन्यवाद।

0: गजानन जी बहुत बहुत आपका वेलकम है स्पेशल कॉल में, कैसे हैं आप?
1: आदरणीय अमन सर नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा सिर का दर्द उसे वैसा ही रहा, मतलब बरकरार रहा, दर्द है मतलब है अभी भी है।
1: अच्छा अच्छा,
0: स्टार्टिंग से ही है अभी भी है, बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं।
1: अच्छा दवाई लीजिए,
0: अब घर जाने के बाद मैं सोऊंगा तब जाके ठीक होगा।
1: बराबर है,
0: वैसे भी कल
1: आराम की जरूरत है अभी।
0: वैसे भी कल इन संडे है, हाथी घोड़े भेज के सोऊंगा आराम से, आराम से 9-10 बजे तक।
1: बराबर
0: जी, ओके। और बताइए।
1: बस ठीक है सर जी, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, हर रोज सुनता हूँ और सुनता रहूंगा।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आज क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: गुड्डी फिल्म का गीत है सर जी, वानी जयराम की आवाज में, बोले रे पप्पी हरा। ये बहुत दिनों से बजा भी नहीं है और दिल कह रहा था कि आज यही गाना सुने।
0: कोई बात नहीं, हम तो हम है ही आप लोग मतलब सुनवाने के लिए, है कि नहीं?
1: बराबर है,
0: तो बिल्कुल सुनवा देंगे, इसमें क्या रखा है, कौन सी बड़ी बात है, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

ओके, तो अब जाते जाते जो गाना छूट गया था आरजे आकांक्षा जी ने नहीं गाया था वो गाना मैं सुनवा के जा रहा हूँ आप सबको, और इसके बाद से मैं आप सबसे लूंगा इजाजत। तो सुनिए और इंजॉय कीजिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: चुप जा तू वहां जहां तेरी अम्मा है।
1: आ आ इधर तू आ आ
0: जा जा घर तू जा जा
1: अरे आ आ इधर तू आ आ
0: जा जा।

0: देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो।
1: ए चोरी

0: हालत पतली कर दी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: You sing like Kishore, but शादी का date?
0: Oh yes, September 8.

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया चले छम छम छम छम छम छम। एक गर्ल हम तुम पे दिल निसार करता है, रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 3 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.